नमस्कार, FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज ते असी आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। आज दिन शुक्रवार है, शक संबत 1948 दे ज्येष्ठ महीने दी 15 तारीख। तदनुसार ईस्वी सन 2026 दे जून महीने दी आज 5 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 ते 42 सैकेंड होए ने। साढ़े अज के प्रोग्राम हुण शुरू होंदे ने ते असी अपने सारे ही स्रोतियां दा इस सभा दे विच बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

एफएम न्यूज हेडलाइन सुना तो ठीक बाद प्रोग्राम गीत बहार। सवेरे 11 बजे एफएम न्यूज हेडलाइंस 11:02 ते तुहाडा मन पसंदीदा लाइव टेलीफोन इन प्रोग्राम लेके हाजिर हो जावांगे पंजाबी तड़का। दोपहर 12 बजे वेला होवेगा एफएम न्यूज हेडलाइंस सुनन दा और उस तो ठीक बाद तुहाडी प्यारे घर नूं होर ज्यादा प्यारा ते खूबसूरत बनाउण दे लई तुहाडी लाइफ नूं अपडेटेड हेल्थ नूं होर वधिया ते तुहानूं तंदुरुस्त रखण दे लई टिप्स दिंदा होया प्रोग्राम लैके हाजिर हो जावांगे होम स्वीट होम। दोपहर दिन दे मिड दे विच एफएम रेनबो जलंधर ते प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज जिस दे विच मेलोडियस रेट्रो सॉन्ग्स इंजॉय करूंगे। प्रोग्राम दरमियान 1:40 तो 1:50 तक वेला होवेगा पंजाबी खबरां दा। दोपहर 2 बजे दिल आज शायर है। दोपहर 3 बजे ले चलेंगे तुहानू एफएम रेनबो दिल्ली के अंदर साडा खास प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। शाम 4 बजे वापस एफएम रेनबो जलंधर केंद्र तो सुन पाऊंगे प्रोग्राम हेलो जलंधर। युवा दोस्त लेके आएंगे प्रोग्राम युवाणी शाम 5 बजे। शाम 6 बजे साडा खास द इवनिंग शो इंजॉय करूंगे लव यू जिंदगी। प्रोग्राम दरमियान 6:20 तो 6:30 तक प्रादेशिक खबरां ते वापस जारी रहेगा लव यू जिंदगी 7 बजे तक। फिर 7 बजे एफएम न्यूज हेडलाइंस तो ताजा जानकारी ले पाऊंगे खबरां दी और उस तो ठीक बाद प्रोग्राम फिल्मी दुनिया। रात 8 बजे एफएम न्यूज हेडलाइंस सुनन तो बाद सजेगा तुहाडा मंच यानी कि प्रोग्राम होवेगा पब्लिक मंच। रात 9 बजे एक बारी फिर तो एफएम न्यूज हेडलाइंस सुनोगे और उस तो ठीक बाद तुहाडियां फरमाइशां ते आधारित प्रोग्राम लेके हाजिर हो जावांगे दिल चाहता है। रात 10 बजे सजेगी गजलां दी महफिल एफएम रेनबो जलंधर दे वेड़े प्रोग्राम शामे गजल। और रात 10:30 पेश करेंगे साड़ी सभा दा आखरी प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है। इस अन साड़े आज दे हुन तो लेके रात तक दे प्रसारित कीते जान वाले प्रोग्राम ते उना दा प्रसारण समा ते हुन वेला हो गया है प्रोग्राम वंदना नू सर्वन करन दा। बने रहो 102.7 FM रेनबो दे नाल।

तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं। वारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। भगत कबीर जी ने सानू दस्या है कि परमात्मा दा नाम लैंदे उन्हूं ये कहंदे कि अगर जीवात्मा हर वेले तू है कहंदी है ते ऐदा कर दे इंसान दा हंकार खत्म हो जांदा है ते हौली हौली इंसान पूरी तरह परमात्मा नूं समर्पित हो जांदा है।

जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। प्रभु दा नाम उस दीपक दी तरह हुंदा है जो साडे मन दे अंदर दा हनेरा दूर कर दिंदा है ते साडे सारियां मुश्किलां नूं वी ओ हर लैंदा है।

0: माया मोई न मन मुवा मर मर गया शरीर आसा तृष्णा ना मुई यों कहे दास कबीर। कबीर जी कहते ने कि इंसान ये प्राणी दी ना माया मरदी है तो ना मन मरदा है पर शरीर बार बार मरदा है। अलग अलग जूना दे विच पटकन तो बाद भी इंसान दी आशा तृष्णा नहीं मरदी, वो हमेशा बनी रहती है। इसनू मारन दा एक ही तरीका है जिसे अपने मन दे विच परमात्मा नू वसा लईए।
1: ओम शुक्लां भरतरं विष्णुं शशिवर्णं।

गुलशन में भंवरों का फेरा हो गया, गुलशन में भंवरों का फेरा हो गया, पूरब में देखिए सूरज का डेरा हो गया। मुस्कान के साथ आंखें खोलो प्यारे, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलो तो प्यारे, एक बार फिर से देखो प्यारा सा सवेरा हो गया। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग पॉजिटिव हैप्पी फ्राइडे मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वैसे मॉर्निंग दे विच ते वार्म वेलकम करना हुंदा है, मौसम चाहे बाहर जिन्ना मर्जी हॉट और वार्म होवे, लेकिन वेलकम तो मैं वार्म ही करूंगी ना। सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड तुहाडा सारिया दा वार्म वेलकम कर दिया, प्यारा जा वेलकम कर दिया इस प्यारी जी फिलहाल ते ठंडी ठंडी सवेर है। सो नवीं सवेर नवीं उम्मीदां ते नवीं पॉजिटिविटी ते एक फ्रेश स्माइल दे नाल तुसी सुन रहे हो तुहाडा फेवरेट वाला मॉर्निंग कंपेनियन शो गुड मॉर्निंग जलंधर, मेरे नाल यानी कि तुहाडी दोस्त आरजे पूजा टोहानी दे नाल। मैं हाँ तुहाडी अपनी तुहाडी दिलां दी आवाज नूं सुनन समझण वाली प्यारी जी कुड़ी पूजा टोहानी। So coming live with smiles, stories, soulful vibes and lots of positivity. Yani ke tohade chehre te bilkul edan di aise hi tarah di smile leke aun de layi aaj ki hai main JFM Rainbow the studio ch waise te subah de 5:30 baje di, lekin filhal time ho chuka hai 7:05 aur pure 36 second 37 38 seconds te bada fat nikal jande ne aur edan hi zindagi हंसते खेडते मुस्कुराते निकल जाती है और उदों ज्यादा आसानी दे नाल जदों साथ होवे प्यारा जिहा FM रेनबो वर्गा। सो FM रेनबो का साथ है तुहाडे वर्गे लिसनर्स दे नाल साडा बनता है बहुत खास। सो इसे करके हमेशा हर बार सारियां दा वारी वारी करदी हुंदी आ मैं वेलकम, जिवें कि तुसी ट्यून कीता होया 102.7 FM रेनबो जलंधर नूं और 103.6 वाले 103.6 मेगाहर्ट्ज़ वाले सानू आकाशवाणी अमृतसर के स्रोतियां का भी निघा स्वागत कर चुके हैं जी। सवेर के 6:30 वो इस वेले सुन रहे हैं सारे ही सानू लाइव, लेकिन इसी फ्रीकुएंसी के जरिए सरहद पार तो भी सानू प्यारे प्यारे लिसनर्स जिन्होंने बेसब्री के नाल रहिंदा है जी FM रेनबो नूं सुनन दा इंतजार, वो भी ट्यून कर चुके ने। और किवें भुल सकदी हां उन्हां नूं जिन्हां ने साडी ऐप न्यूज़ ऑन AIR दे जरिए सानू बिल्कुल लाइव ट्यून कीता होया है। थैंक यू जी तुहाडा सारिआं दा। और अज 5 जून फ्राइडे मॉर्निंग, बहुत सारिया चीज़ां अज मेरे पिटारे दे विच हैगियां ने, वारी वारी आपां उन्हां सारिआं गल्लां ते गल करांगे, सारिआं गल्लां तुहानूं सुणाऊंगी मैं। ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਫਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਪੂਜਾ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂਰ ਮੋਰਨਿੰਗ ਬ੍ਰਾਈਟਰ ਲਾਈਟਰ

लो जी, मेरी मॉर्निंग गुड कर दी है मेरे कंप्यूटर साहब ने। और वैसे तो हुण तक तो तुहानू पता चल ही गया होगा कि जो तो मैं आनी हाँ, सब तो पहला सरप्राइज से मैनू मेरे ये प्यारे प्यारे दो साथी देंगे ने हैंग हो के। लेकिन मैं तुहानू तो हैंग नहीं होन देना, ना आप ट्रिप होन देना, क्योंकि मैं हैगी है ना तुहाड़ा साथ देनु, तुहानू सांभण। सो वेलकम बैक आफ्टर दिस सोलफुल ट्रैक एंड वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक। हुणे तुसीं इंजॉय कीता ये हसी वादियां, महसूस होया ना? बस इसी करके मैं तुहानू कहा सी कि FM रेनबो इत्थे गल्लां और म्यूजिक आप सुनते थोड़ियाँ, आप महसूस करते हैं। मेरी एटलीस्ट यही ट्राई होंगी है कि तुहानू हर गल, हर शब्द, हर गीत फील होवे। सो इदां दा ही ये रिश्ता है अपना। फिलहाल इस तो मैं याद आया कि मैं तुहानू कहा सी अज का दिन बहुत खास है। कोई गल नहीं, मैं सरप्राइज रिवील कर दूंगी। काली बड़े पै जाने तुसी, कोई गल नहीं, लाइफ नू कॉम्प्लीकेट ना करा करो, डोंट कॉम्प्लीकेट लाइफ, क्योंकि असी इत्थे हमेशा थोड़ी रहना है। लेकिन इंजॉय करना चाहिए लाइफ नू, जो प्रेजेंट मूमेंट है, और पॉजिटिविटी, हैप्पी मूमेंट्स लभ लेने चाहिए ने। अच्छा, अगर नहीं हैगे तो क्रिएट कर लेने चाहिए ने, इन्ना तो कर सकते ना आप। और चेहरे पर एक प्यारी जी स्माइल लैके आनी चाहिए है। नहीं आती, कोई गल नहीं, लैके आनी चाहिए, मैं तुहानू कहा। सो इदां दे मूमेंट्स लभो, इदां दा साथ लभो जो तुहानू खुश करता है, दिलों खुश करता है, तुहाड़ी रूह नू सुकून दिंदा है। वैसे हर मॉर्निंग मैं दस्या कि नवी शुरुआत लैके आउंदी है, नवे मौके लैके आउंदी है, है ना? हमेशा ही आपां गल करदे आं। और एक चीज़ होर मैं हमेशा कहनी है कि ग्रैटिट्यूड यानी कि परमात्मा दा शुकराना करया करो हर चीज़ दे लई, हर सवेर दे लई, हर दोपहर दे लई, हर शाम दे लई, प्यारी जी शाम दे लई, और हर रात दे लई, क्योंकि रात आउंदी है। सारा दिन सानू बड़ा कुछ सिखा के जांदा, रात नू असी थोड़ा रिफ्लैक्ट कर सकते हैं किहड़ी किहड़ी चीज़ां अज दे दिन दे विच होईयां, किहड़ियां गलतियां कीतियां, किहड़े सुधार किते, किहड़े सुधार किते जा सकते ने। और गलतियां तो असी सीखदे आ ना, एक्सपीरियंसिस उही मुड़ के साडी लाइफ दे इदां दे माइलस्टोन्स बनदे ने, फिर अगे जाके असी बाकियां नू ज्ञान दे पाउने आ, ऐदां ना करो, ऐदां करिया करो, हुंदा ना, बड़ी वारी होया होएगा। सो इन्हां नू ही एक्सपीरियंसिस कहिंदे ने, और लाइफ इसानू रोज मौके दिंदी है, और एक मौका होर दिंदी है। वो मौका ये है, आस पास देखो साथ कौन दिंदा है। जरूरी थोड़ी है कि अपने साथ दिंदे ने, कई बार अपने नहीं बेगाने भी साथ दिंदे ने। सो जिहड़े बेगाने साथ दिंदे ने वो अपने ही हो जाते हैं। बहुत बारी असी लोगों को मिलते नहीं हाँ, जानते भी नहीं होंगे, लेकिन एक अनजाना जहा रिश्ता उन्होंने नाल महसूस होंदा है किसी भी तरह ना, तुहाड़ा ते मेरा। नहीं देखिया तुसी ना मैनू कदे, ना मैं तुहानू देखिया, पर है ना अपना रिश्ता, होंदे तुहानू सारयां नू मेरे नाल गल करन दा, मेरियां गल्लां सुनन दा बेसब्री दे नाल इंतजार। बस, और नाल ही आ जांदी आ हुणी जिहड़ी स्माइल आई है चेहरे ते, इहनू ही मेनटेन रखना। और गाना सुनने आपां, गाना सुन के जल्दी दे नाल वापस आना है, तो फिर आपां गल करांगे अज दे दिन दे विच खास की है। दसूंगी जल्दी का दी है पूजा तो हानी तो हाड़े नाल FM रेनबो ते। गुड मॉर्निंग।

थिंक ये मेरिया फीलिंग्स और मेरे इमोशंस जो फिल्म रेनबो दे लिए ओ इस गाने ने की थी एक्सप्लेन. वेलकम बैक पूजा टोहानी दिना. गुड मॉर्निंग जलंधर. एंजॉय कर रहे हो तुसी फिलहाल 102.7 ते 103.6 से और नाल नाल न्यूज ऑन AIR ऐप ते एब्सोल्युटली लाइव, क्योंकि लाइव है तो लाइफ है. और एफएम रेनबो बिल्कुल लाइव है, लेकिन दिल तो दिल तक पहुंचा दे एक गल्ला, सो दिल से दिल तक भी है. सो दिल दे विच नहीं, दिमाग दे विच फिलहाल मेरी एक गल आई है, जे करना होवे ना बंदे ने तो सब कुछ हो जाता है अगर करना होवे ता. और एदां दा ही एक होर वाकया मैं दस दियां तुहानू, रेगिस्तान तो ही है. और ये है जी, जिन्हां ने एक बहुत ही डिफरेंट जर्नी काम किया, मतलब एक तरीके ना कह लो कि वर्ड नहीं है जी मेरे को उन्होंने, मतलब उन्होंने तारीफ करने के लिए हैट्स ऑफ ही निकलेगा, सल्यूट होएगा दिल तो, जो मैं उन्होंने कहानी तुहानू सुनाऊंगी. गल दसन जा रही हाँ राणा राम बिश्नोई जी की, जिन्होंने रेगिस्तान के 27,000 पेड़ लगा दिते ने हुण तक. उम्र उन्हां दी 78 साल. पिछले 50 साल तो रेगिस्तान दे विच इदां दे पेड़ लगा रहे ने जिहड़े कि सोच भी नहीं सकते आपां कि पॉसीबल है. लेकिन सिर्फ एक मटका यूज़ करके, मतलब मटके दे राहीं उह पाणी लैके ट्रैवल करदे ने. रेगिस्तान दी गल कर रही हां. और नीम, रोहेड़ा, बबूल वर्गे पेड़ इन्हां ने रेगिस्तान दे विच उगा के दिखा दे दित्ते. वो कहते हैं कि ये सिर्फ पेड़ नहीं है, मैं नाम नहीं करना चाहता सीगा कि कोई पौधा लगा देता या कोई पेड़ लगा देता, उन्होंने फायदा भी होना चाहिए. इन्नी मतलब तपली गर्मी दे विच और रोज़ाना 3 to 4 किलोमीटर पैदल चलते ने, कड़े उन्होंने सिर ते चुके होंगे ने, और इन्हां आप अपने हत्थां नाल लगाए हुए पेड़ां नूं पौद्यां नूं उह पाणी दिंदे ने. उम्र दे इस पड़ाव ते वी उह अपने नाल ए बाल्टी और सिर ते कड़ा चक के पाणी दा उह कैरी करदे ने, लै के जांदे ने. और जिथे भी उन्हां नूं दिखदा है कि पेड़ नूं जरूरत है पाणी दी, उत्थे फिर उस पेड़ नूं पाणी दिंदे ने. ते मैनूं इह लगदा कि अगर इदां दे मकसद दे विच असीं उन्हां दा साथ दईए, मतलब जिते सानूं इदां लगे कि कोई इदां दा कुछ अलग या डिफरेंट काम कर रहा है, असीं इंस्पायर क्यों नहीं हो पाते, क्यों असीं लेजी जे बन के अख जी फेर के अगे चल जाने हैं. इदां दा कोई काम असीं भी कर सकते हैं ना. गुड डीड करन दे नाल ही काम होंदे ने, सोचन दे नाल कुछ नहीं होंदा. अगर वह 3 to 4 किलोमीटर रोज़ाना पैदल 78 साल की उम्र के चल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुदरत के प्रति उन्होंने प्यार में ये चीज़ा दर्शाउंदियां ने, अपना फायदा उन्होंने कोई नहीं है, असी क्यों नहीं कर सकते. तो जिथे भी उन्होंने लगता है कि पेड़ लगाने की जरूरत है, दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है, तो वह पौधा भी लगाते हैं और फिर रोज़ उसकी देखभाल के लिए उसनों पानी देने जाते हैं. और एवं करके पिछले 50 साल तो उन्होंने 27,000 पेड़ उगा दिते ने रेगिस्तान के. So hats off to Rana Ram.

0: साथ मेरी आवाज है और ये गाना है।
1: ओके, एक गाना कितना लगा मैं दस दियो, लेकिन फिलहाल गाने तो पहला एक गल भी तो हो जाए। गर्मी है, सो गर्मी में तुम सोच रहे हो कि आज पूजा सिर्फ गल्लां करके चल गई है, कुछ नहीं, साड़ी टमी दे लई उसने कोई भी सानू रेसिपी देती। ऐदा हो सकता है, कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन आज नहीं होएगा। क्विक रेसिपी गर्मी नू देखते हुए, सो करना की है तुसी पहला नोट करने ने इनग्रीडियंट्स, फिर तुसी बनानी है, तो फिर मैंने देना है फीडबैक। सो आज दी रेसिपी है क्यूकम्बर छाछ, खीरे दी लस्सी। नहीं, पंजाबी दे विच मजा नहीं ना आया, हसना नहीं है तुसी मेरी रेसिपी ते, पहला ट्राई करनी है, फिर उसे एक सिप लैके मैंने फीडबैक जरूर दियो। क्विकली करना की है, घर दे विच दही होएगा हैगा ना, ओके, ओनू लैना है, मिक्सी दे विच पाउणा है, फिर उस विच थोड़े जिहे पत्तियां तुसी पुदीने दीआं पा देणियां ने, और एक मीडियम साइज का खीरा वो भी पा देना है, थोड़े जे पत्ते करी पत्ते दे पा सकते हो, अगर थोड़ी जी स्पाइसी चाहिए है तो एक, बाकी तुहाडे टेस्ट पर डिपेंड करता है हरी मिर्च किन्नी कु चाहिए है। भुन्ने हुए जीरे का पाउडर पा लेना है, थोड़ा जहा काला नमक पा लेना है, सेंधा नमक पा लेना है, काफ़ी सारी आइस पा लेनी है, बाद विच आइस पानी है, ओके, इन सारी चीज़ों को मिक्सी दे विच पा के ग्राइंड ग्राइंड ग्राइंड और मिक्स मिक्स मिक्स कर लेना है चंगी तरह, ओके, मिक्सचर रेडी हो जाएगा, ग्लास दे विच पाउणा है, काफ़ी सारी आइस पानी है, सिप सिप करके पीना है, तो फिर मेरा नाम लैके याद करना है मैनू कि किदां दी लगी है रेसिपी, तो दसना भी है जरूर तुसी मैनू। फिलहाल इसी नोट ते गुड मॉर्निंग जलंधर इत्थे ही वाइंड अप कर रही हैं, जा मैं किते नहीं रही, हजे भी सफर अपना 10 बजे तक है, सिर्फ गुड मॉर्निंग जलंधर वाइंड अप कर रही हैं, लेकिन लास्ट ट्रैक तुहानू जरूर सुनाऊंगी, 8:30 बजे सुनोगे तुसी खबरां, 8:40 to 9 अड्डी टप्पा, सो स्टे ट्यून्ड, किते भी नहीं जाना तुसी, इदां ही बैठे रहना, नचते रहना, टपते रहना, जो काम करते हैं करते रहना, पर नाल दी नाल रेडियो नू हलाना नहीं है, चैनल चेंज नहीं करना, इट्स नॉट अलाउड, एंड इंजॉय द लास्ट ट्रैक ऑफ गुड मॉर्निंग जलंधर, पूजा टहानी तुहाड़े नाल।

नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक वंस अगेन। टाइम हो चुका है रेडियो रेनबो दी घड़ी ते 8:40 और पूरे 55 सेकेंड, यानी कि टाइम हो गया है तुहाड़े फेवरेट वाले सैगमेंट का, जिस विच तुसी नॉन स्टॉप पंजाबी बीट म्यूजिक, बीट सॉन्ग्स इंजॉय करदे हो, यानी कि अड्डी टप्पा दा। सो बिना देर किते और बिना मेरी इंटरप्शन तो इंजॉय करोगे ठीक 9 बजे तक अड्डी टप्पा। तो बिना देर किते प्ले करन जा रही हैं तुहाड़े फेवरेट वाले सॉन्ग नो। आई एम श्योर तुहानू ये गीत जरूर पसंद आएगा। स्टे ट्यून्ड and enjoy this track.

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 तो प्राप्त की जा सकती है।

म्यूजिकली योर्स एंड ओनली योर्स, और इसी वजह करके लो जी फिर आ चुके हाँ दोबारा तुहाड़े ना गल्ला बातें करन, क्योंकि हजे बाय बाय करन दा मन ते है ही नहीं सी। हजे ते नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वंस अगेन

0: स्वागत जी।
1: अज विश्व पर्यावरण दिवस ते मैं कहना चाहना कि जिस तरह गुरबाणी विच लिखा है कि पवन गुरु पाणी पिता
0: माता
1: माता धरत
0: धरत महत।
1: मात,
0: जी
1: ते ये जिहड़ियां साडियां तिन्ने चीजां जरूरी आदत जिंदगी दियां,
0: जी
1: ये असीं तिन्ने ही अपनियां खराब कर चुके हैं
0: बिल्कुल जी बिल्कुल।
1: अपनियां अणगहलियां करके। ते अज जो जरूरत है वो सानू इन्हां नूं ठीक करन दी है, क्योंकि ये जो सृष्टि है साडा घर है, इस
0: जी
1: नूं उहदे सही तरीके दे नाल इस्तेमाल करना ते उहदी रक्षा करना ये साडा फर्ज है। ते इस करके असीं 20-20 मरले दीआं कोठियां तां बणा लईआं, पर इहनां विच रहिण वाले जो इंसान आ, जो उहनां दी जरूरत है पाणी दी है, हवा दी है,
0: जी
1: ते धरती दी है, तो उह असीं खराब कर लईआं, जिस करके अज घर घर दे विच जो है वो बीमारियां फैल रही हैं,
0: जी
1: जिहड़ियां कदी अगे असीं सुनिया नहीं सी कि
0: सुनिया ही
1: इस
0: नहीं
1: तरह दियां
0: सी बिल्कुल
1: बीमारियां। उहदी
0: जी।
1: सारी वजह है कि वातावरण जो है साडा बाहरी वो बिल्कुल ही खराब हो चुका है, जिस
0: बिल्कुल
1: विच साह लेना भी बड़ा मुश्किल है। ते इस करके सानू ये चाहिदा कि असीं हुण इस जिहड़ी धरती तों नुकसान पहुंचाया है, ते इहदी हुण मरम्मत करन दा जिहड़ा जुम्मा वो हर एक बंदे दे हथ विच होना चाहीदा है।
0: जी
1: ये एक बंदे दी करन वाली गल नहीं, क्योंकि घर च कोई मुसीबत होवे तां सारे जद मिलजुल के कम करदे आ तां वो मुसीबत फिर टल जांदी है।
0: जी
1: इस
0: जी जी
1: करके पर्यावरण नूं साफ सुथरा बनाउण लई हर एक बंदा, कोई भी है, चाहे कोई बजुर्ग है, चाहे बच्चा है, चाहे कोई जवान है, हर एक नूं मिलके जिहड़ी वो कोशिश करन दी जरूरत है,
0: जी
1: तां ही आपां जिहड़ा अग्गे जा के अपनी आउण वाली पीढ़ी वास्ते हवा पानी धरती जिहड़ी आ शुद्ध छड्ड के जा सकदे आ, नहीं तां जिस तरह दा माहौल चल रिहा ते अग्गे वास्ते जिहड़ा वो साह लैणा भी मुश्किल हो जाणा आ। ते इस करके सानूं सब नूं चाहीदा कि अपना अपना योगदान दईए, ना वो देना बड़ा जरूरी आ, ते नहीं तो अगे तो मतलब बड़ा मुश्किल समा आ जाऊगा, ते इत्थे जिहड़ा धरती ते जिहड़ा रहना भी मुश्किल हो जाऊगा, ते इस तो बचने लई सब नूं कोशिश करन दी जरूरत है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। यही करके तो असं बार बार कही जाने सारे थोड़ा जहा अपना योगदान पाउन ते अपने आप च बदलाव लैन, बजाय दूसरे नूं ज्ञान देन दे अपने आप दे विच बदलाव लियाउन और छोटी छोटी शुरुआत करन। जिवें साडे अज दे एक्सपर्ट दस के गए सी कि जिथे असीं जरूरत तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा कपड़े एवें लै के रखते रहने हैं ना, सब तो पहला तो उही सिर्फ जरूरत की जिहड़ी चीज़ है ना, जिन्नी क उन्नी की आपां नूं रखनी चाहीदी है, क्योंकि असीं कदी ये सोचे कि ये जिन्ने कपड़े है इन्हां दा बाद विच की कीता जांदा है, किवें इन्हां नूं रीसाइकल किया जाता होएगा, की इन्हां दा हुंदा होएगा। सो प्लीज़ है ना, थोड़ा जिहा आपां इन्हां सारियां चीज़ां ते पैसे भी लगाने, पैसे कमाने किन्ने औखे हैं और बाद विच असीं ऐदां ही सिर्फ अपने शौक ते फिजूल खर्ची करते हैं और मुड़ के वो साढ़े पर्यावरण साढ़े प्लैनेट नूं तंग करते हैं, खराब करते हैं, उहदा फायदा कोई नहीं है। वैल चलते हैं प्रोग्राम दे विच, अगला मैसेज वॉइस सुनते हैं जी, कित्थों आया है।
2: फिर सफाई दिया ते फिर जांदा जांदा दो लाइना होर बोलांगा। मैसेज मैं अपने दायरे विच रह के करना, पूजा जी सताई अमरी चलदा।
0: बिलकुल बिलकुल।
2: ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਅਨਾਰ ਦੇ ਜੂਸ ਦਾ।
0: ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਜੀ।
2: ਇੱਕ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਜੀ,
0: ਜੀ
2: ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਰ ਤੇ ਉੜਦੀਆਂ ਕੂੰਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ
0: ਜੀ,
2: ਕੂੰਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ FM ਰੇਨਬੋ ਤੇ ਮੈਡਮ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਣਾ ਮੋਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਣਾ ਮੋਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ FM ਰੇਨਬੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੁੰਮਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ,
0: ਬਹੁਤ
2: ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੂਜਾ ਜੀ ਮੈਸੇਜ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੋਪ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਤੋਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਔਰ 27 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ

वेलकम बैक आफ्टर दिस डांसिंग वाला एंड वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक। और लै जो जिन्हें जो ले जाना है कुदरत दे मजे लो, और जिन्हें अच्छी हवा ले जानी है वह लै जाओ, लेकिन अच्छी हवा ले जाने लिए पहले पेड़ पौधे लगाने पैने ने, फिर ही असी कोई बुले लुट सकते हैं कुदरत दे नज़ारियां दे। वेलकम बैक। और अगला मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग, नेम सुनील कुमार, जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट सांबा तो। एक चाह के कप के नाल ते पहाड़ां च उगदे हुए सूरज के नाल मैनू गुड मॉर्निंग आ चुकी है जी, थैंक यू। कहिंदे कि अज सवेरे सूरज बिल्कुल तुहाडे वर्गा निकलिया, आज सुबह सूरज बिल्कुल आप जैसा निकला, बिल्कुल वो ही खूबसूरती, वो ही नूर, वो ही गुरूर।

अजय प्रेम की गजब कहानी, ये कैसा है फिल्म का नाम? बड़ा मजा आया सुन के मेरे को। आपने देखी है ये फिल्म? हाँ, मैंने पता है तुसी ये फिल्म देखी है। गया बहुत ही फनी मूवी सी, बड़ा इंजॉय किया सी सारे ने, और इस गीत नू आवाज़ दी के ते शिल्पा राव ने। जो सुने सुने गीत चलते ने, दिल खुश होंदा है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। गार्डन तो याद आया कि बई जिहड़ा अज दा दिन है बहुत खास है, वह इसलिए खास है क्योंकि एनवायरमेंट डे हैगा। ते अज मैं भी ना ग्रीन कलर दी टी शर्ट पा के आई हाँ।

इतना मजेदार गीत, जहर फिल्म दा, जहर जहर जहर, वधिया लग गया ना इदा बोलिए, पर वो वर्ड नहीं अच्छा हैगा, आओ मैंने पता हैगा। आतिफ असलम की आवाज़ में तुसी बहुत ही बेहतरीन गीत सुनिया हैगा, तो प्रोग्राम चल रहा है गीत बहार, विच ब्रेक भी आ जाती हैगी है, दैन उस तो बाद प्रोग्राम भी दोबारा शुरू हो जाता है। तो पता है कि जे तुसी मॉर्निंग उठ के स्किपिंग करोगे तो तुहाड़ी हैल्थ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, वो पता है किदा। हुण मोस्टली असीं यही देखते हैं कि बई फैट बहुत ज़्यादा वध रहा, ओबेसिटी जिहड़ी है, मोटापा वधदा जा रहा हैगा। सो उहदे लई की है, असीं डाइट प्लैन यूज़ करते हैगे हैं, जिम जाते हैगे हैं, पर की तुहानूं पता है कि तुसीं स्किपिंग करन दे नाल ही अपना जिहड़ा वेट लॉस कर सकते हो। बहुत ही ईजी है, मॉर्निंग उठ के तुसीं खाली पेट, चाहे तुसीं पानी पी लो, नींबू पानी पी लो, जो भी तुसीं मॉर्निंग ड्रिंक लैंदे हो, लैण तों बाद स्किपिंग जरूर करो। वो की होंगे जो तो खाली पेट स्किपिंग करते हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा वधिया रहिंदा, जिहड़ी तुहाडी चर्बी हुंदी हैगी ना हौली हौली पिघलनी शुरू हुंदी है, तो तुसीं कुछ टाइम बाद पतले हो जाते, पतले इन द सेंस फिट एंड हैल्दी हो जाते हो। मैं ये नहीं कहती कि बहुत जीरो फिगर कर लो, वो भी नहीं अच्छी लगती हैगी है, बट एक बैलेंस जरूर होना चाहिए, ना तुसीं बहुत ज़्यादा मोटे होने चाहिए हो, ना पतले। अपनी डाइट एंड एक्सरसाइज इस तरीके की रखो कि तुसीं बिल्कुल एक जो एवरेज वेट एंड हुंदा हैगा उन्ना का तुहाडा होना चाहिए। बिकॉज हुण जिद्दां देखिया जा रहा अजकल की जिहड़ी जनरेशन है, वो 40 दी 50 दी हो के बुढ़ी लगती नहीं है। हुण एड्डी वड्डी एग्जाम्पल लै लैने, रेखा जी, आए हाय, रेखा जी हले तक लगता ही नहीं कि यार वो बुजुर्ग ने, हले भी उन्होंने देख लो क्या नूर उन्होंने चेहरे पर हुंदा है, किन्ने सोहने वो लगते हैं। सो अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खास करके लेडीज़, मैं तुहानू कह रही हैगी हाँ, वो इसलिए क्योंकि तुसी इन्ना का ज़्यादा फैमिली, बच्चे, हसबेंड सारे दे विच बिजी हो जाते हो कि अपने आप नू देखना भुल ही जाते हो। भैया सोहना जिहा टाइम कढ़ो, एक फेस पैक बनाओ, फेस ते लगाओ, चिल करो थोड़ा टाइम लई। हाँ काम तो होंगे ही रहने हैं, पर जे एक बारी सेहत खराब होगी ना, वो छेती ठीक नहीं होंगी। सो ये तुहाडे हाथ है, अपने आप नू निहारो, अपने आप नू शीशे विच देख के गल्लां करो, यू आर ब्यूटीफुल, तुसी हमेशा ब्यूटीफुल हो, हमेशा ब्यूटीफुल ही रहोगे। सो ये जिहड़ा कॉन्फिडेंस है हमेशा अपने अंदर रखना चाहिए हैगा। जिदां मैं तुहानू दसदी हाँ कि मेरे को भी एक सोहनी जी कुड़ी बैठी हुई हैगी इस टाइम स्टूडियो दे विच, और इन्नी क प्यारी वो लग रही है, इन्नी सोहनी सोहनी रील्स बना रही है मेरे को बैठ के, क्या सोहने सोहने फेसिस बना रही है। बई खूबसूरती तुहाडे दिल दे अंदर हुंदी है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਅਗਲਾ ਗੀਤ, ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੀਤ।

FM News Headlines। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज गुजरात ते दमन दे दौरे ते होणगे। करीब 21,800 करोड़ तो वध दी लागत वाले कई विकास प्रोजेक्टां दी करनगे शुरुआत। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप विच हिस्सा लैण वाले एथलीट्स नूं आयुष मंत्रालय दी योग 365 मुहिम दे आलमी राजदूत बनन दा सद्दा दित्ता। भारतीय रिजर्व बैंक अज अपनी दो माही मुद्रा दी नीति दा ऐलान करेगा। लोक सभा दे सबका जनरल सकत्तर अते संविधान माहिर सुभाष सी कश्यप दा कल नवी दिल्ली विच देहांत हो गया। अज विश्व वातावरण दिवस है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों नूं जलवायु अते भविख लई कुदरत तो प्रेरणा लैंदे रहण दे अपने संकल्प नूं दोहराउण दी अपील कीती। रूस दे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतीन ने भारत नूं भरोसेयोग भाईवाल दस्या है। कहा अमरीका का दबाव भारत रूस संबंधा नूं प्रभावित नहीं करेगा। पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड वालों पटियाला स्थित गुरद्वारा श्री दुख निवारण साहिब नूं प्रसाद वंडन लई वरते जाण वाले रवायती प्लास्टिक बैगां नूं चौगिरदे पक्षी बणाउण दी अपील। पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूलों वालों मनमने ढंग नाल फीसां विच वाधे तो रोक लई कानून दा खरड़ा बनाउण दे हुकम दित्ते। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा वालों मुलाजम जथेबंदियां नाल मुलाकात, जायज़ मंगां ते जल्द कार्रवाई दा दित्ता भरोसा। मौसम विभाग ने अज पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ समेत होरना कई सूबियां विच गरज चमक दे नाल हनेरी चलन बारे ओरेंज अलर्ट जारी किया। मर्दा दे अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट दे सेमीफाइनल विच आज भारत दा मुकाबला पाकिस्तान नाल। इस एफएम न्यूज़ हेडलाइंस ते हुन पेश है प्रोग्राम पंजाबी तड़का। बस इस ब्रेक तो बाद

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

जब से मिला है प्यार तेरा, जब से मिला है प्यार तेरा, गम में भी मुस्कुराना सिखा दिया।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वेलकम बैक प्रोग्राम विद मेलोडीज। तो एंजॉय कर रहे हो अपने फेवरेट चैनल्स 102.7 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो ते 103.6 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी अमृतसर ते। मैं थोड़ी दोस्त इंद्रप्रीत सिरा होनी। तुसी ब्रेक तो पहला जड़ा गीत सुनिया सीगा, शायद मेरी शादी का ख्याल अज कल आंदा है ते फिर डर भी लगता है। इस फिल्म का नाम सी सौतन, लता मंगेशकर ते किशोर कुमार की आवाज़ दे विच तुसी इस गीत नू एंजॉय किया। तेरी मुस्कान से दिल धड़क जाए, तेरी यादों से रूह महका जाए, तुझ बिन हर पल लगता है अधूरा सा, तुझ बिन हर पल लगता है अधूरा सा, तू साथ हो तो जैसे जहां सज जाए।

0: एक उम्र कटी दो अल्फाज में, एक उम्र कटी दो अल्फाज में, एक आस में एक काश में। जी हाँ दोस्तों, FM9 मेगा हार्ट्स का ये आकाशवाणी चैनल 102.7 मेगा हार्ट्स जलंधर दा रेनबो चैनल है जी। ते प्रोग्राम चल रहा है दिल आज शायर है। मैं हाँ थोड़ी आरजे दोस्त सुरभी। जी हाँ दोस्तों, दो लाइना मैं पहला कही चो शायरी बोली चो प्यारियां जी लाइना लिखिया सी गुलजार साहब ने। ये गल हो गई उन्हां दी, पर हुण शेरो शायरी का समा हो चुका है थोड़े सब दे ले। जी हाँ, पूरे 2 बज गए हैं ते सुकून वाला प्रोग्राम आ गया है ना। मैनू तो यही लगता है कि प्रोग्राम सुकून वाला है जो कि राहत दिंदा ते सुकून दिंदा है। इस करके इस विच आपां दिल दीआं गल्लां भी करते हैं, अपने जज्बात एक दूसरे नाल शेयर करते हैं, वह भी शायरी के माध्यम नाल। ते लो जी, अपने दोस्त नूं हुण जल्दी जल्दी शेरो शायरी भेजनियाँ शुरू कर दो जी। नंबर भी मैं अनाउंस कर दिंदी हाँ, पर इस दे नाल मैं तुहानूं दसदा कि शेरो शायरी भेज तो रहे हो तुसी, पर खास ध्यान तुसी रखना है वह तुसी चंगे तरीके नाल जानते हो कि मैं की कहन वाली हाँ। जी हाँ, एक खास ध्यान रखना है जी कि तुसी जो भी शायरी भेजोगे अपने नाम दी भेजियो, यानी कि अगर तुसी खुद लिख रहे हो तो, अगर तुसी किसी होर दी भेज रहे हो तो एक गल का ध्यान जरूर रखियो कि शायरी जिहड़ी है जिन्हां दी भी लिखी गई है उन्हां दा नाम भी जरूर मैनशन करियो। सो शुरुआत करते हैं इस सफ़र की। हुण तुसी मैनू शायरी भेजनी है साढ़े व्हाट्सएप नंबर ते, नंबर है 9855 10 10 27 9855 1010 027। इस नंबर ते अपनी आरजे दो सुरभी नूं तुसी ऐसे सारे शायर जल्दी जल्दी शायरी भेज सकते हो।
1: दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, ये फुर्सत रुकी हुई नहीं है, कोई ठहरी हुई जमी हुई चीज नहीं, एक जुनबिश है एक हरकत करती हुई कैफियत।

से क्या नहीं मालूम। हम फराज शेरों से दिल के जख्म भरते हैं, क्या करे मसीहा को जब दवा नहीं मालूम। क्या बात है जी। इस अन पेजी से कुलविंदर टेलर होना नहीं, पिंड कंडोला नियर आदमपुर तो। और ये शेर व शायरी का सिलसिला लगातार जारी है और मैंने बहुत सारियाँ पहुँच भी चुकियाँ ने। जल्दी मैं बाकी भी थोड़े सारे दे नज़र करूँगी, पर एक प्यारी जी गज़ल जड़ी मैं ज़रूर हूँ पेश करूँगी। नंबर तो सबनों पता है, तो सबनों नंबर है जी, फिर भी मैं अनाउंस करूँगी कि 9855 10 10 10। इस नंबर पर तुसी सानू भेजनी अपनी शायरी 9855 10 10 27। ये साडा नंबर है, इस नंबर पर अपनी शायरी भेजो। अपने दिल के जज्बात किसी डेडिकेट करना हो भी तुसी कर सकते हो जी। अज खुल के अपने दिल की गल मेरे नाल तुसी सांझी कर सकते हो। प्रोग्राम का सफर इसी तरीके चलता रहेगा जी। इस गीत तो बाद मुड़के आउंदी हां जी।

जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा सी दिल आज शायर है। मैं हाँ जी तुहाडी आडे दो सुरभी जो हूँ तुहाडे को इजाजत लैन लगी है इस प्रोग्राम लई। फिर तो आऊँगी जी पूरे 4 बजे प्रोग्राम लैके हैलो जलंधर। कितने नहीं जाना तुसी, अगला प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर है जो तुहाडी सेहत नाल जुड़िया हुआ बड़ा ही खास प्रोग्राम है।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं अनुराधा और एक बार फिर लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। श्रोताओं, बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदला और बदलता रहेगा, लेकिन ये सच्चाई कभी नहीं बदलेगी कि स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ जलवायु की ज़रूरत होती है, और वो तभी होगा जब पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा। जी हाँ, आज का विषय अब तक आप समझ चुके होंगे, आज है विश्व पर्यावरण दिवस। इस उपलक्ष में आज पर्यावरण की अहम भूमिका पर चर्चा होगी। यदि आपका भी है कोई सवाल तो हम तक आप पहुँचा सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 0112342108। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। आपके सवालों का समाधान करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जी सी खिलनानी, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन, PSRI हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब का हम स्वागत कर रहे हैं कार्यक्रम में। जी, स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
2: हाँ, बिल्कुल।

0: धन्यवाद बहुत
1: जी
0: आपका, मैं वेरी हैप्पी टू बी हियर।
1: तो डॉक्टर साहब, सवालों का सिलसिला शुरू करें, उसके पहले श्रोताओं को ये बता दें कि वर्ष 2026 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, जिसका आधिकारिक ग्लोबल स्लोगन है नाउ फॉर क्लाइमेट, अब जलवायु के लिए कदम उठाएं। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल यही है कि इस समय जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है लगातार, उसका क्या कारण है?
0: अनुराधा, ऐसा है कि जो एनवायरनमेंट है, जो नेचर है,
1: जी
0: उसकी हमें ज्यादा जरूरत है, जब बल्कि एनवायरनमेंट को हमारी जरूरत नहीं है। तो जो एनवायरनमेंट है वो सिर्फ वायु प्रदूषण नहीं होता है,
1: जी
0: उसमें पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, पानी होता है, पौधे होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एक ये सब मिला के इको सिस्टम बनता है,
1: जी
0: जिसमें जो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, हर आदमी प्लास्टिक की बोतल में पानी पीता है सेफ्टी के लिए,
1: जी
0: लेकिन मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लास्टिक जो यूज होता है वो आखिर कहाँ जाता है? आखिर वो पानी में जाता है, आखिर वो हवा में जाता है। दिल्ली में एक शोध हुआ था जिसमें के माइक्रो प्लास्टिक हवा में पाए गए थे,
1: जी
0: और जिससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसी तरह से हमारी जो एक्टिविटीज है, एक तो वायु प्रदूषण तो है ही, ये जो डीजल से और पेट्रोल से और कोयले से, उससे हमारी
1: जी
0: जो एक्टिविटीज हैं उनकी वजह से जो हम एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, उस वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है बहुत ज्यादा।
1: जी
0: और आपने देखा होगा कि पहले जो आपने शायद नहीं देखा, मेरी उम्र के हिसाब से जब मैं छोटा था तो सर्दियों में सर्दी होती थी, गर्मियों में गर्मी होती थी,
1: जी
0: लेकिन अब जो है वो मौसम में इतना परिवर्तन आ गया है, बहुत एक्सट्रीम हीट आती है, 47, 48, 50 डिग्री पे भी जा रहा है। इस वजह से जो बाढ़ का आना और साइक्लोन्स का आना, नेचुरल कैलेमिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि हमें अपने पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को बचा के रखना है। और इसी संदर्भ में 1972 में यूनाइटेड नेशंस ने 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे डिक्लेयर किया था, जिसको कि आज हम कमेमोरेट
1: जी
0: कर रहे हैं। इसके बाद में आपके जो प्रश्न होंगे उनका
1: जी
0: मैं
1: जरूर डॉक्टर
0: उत्तर दे
1: साहब, जो
0: पाऊंगा।
1: बातचीत है उससे तो हमारे श्रोताओं तक संदेश पहुंचेगा ही। यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक ले रहे हैं, उससे भी संदेश लोगों तक पहुंचेगा। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: तो श्रोताओं, आज पर्यावरण दिवस पर हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जी सी खिल्लानी जी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे अभी जलवायु परिवर्तन की, ये किस तरह से हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए?
1: देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो बात करूं मैं
0: जी,
1: वायु प्रदूषण की, जो कि मेरा रिसर्च एरिया रहा है।
0: जी
1: और आप दिल्ली में रहते हैं तो जैसे ही दिवाली आती है तो प्रदूषण बढ़ता है और आपका गला खराब होने लगता है,
0: बिल्कुल,
1: आपको आवाज भारी हो जाती है, नाक बहने लगती है, आंखें जलने लगती हैं और कभी बार स्किन में भी इरिटेशन और इचिंग होनी शुरू हो जाती है। शाम को आपको थकावट होती है, नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है कई बार।
0: जी
1: तो ये तो, और हम डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर के पास अटेंडेंस बढ़ जाती है, खांसी पेशेंट आते हैं और हम उनको देखते हैं तो ना उनको बुखार होता है, दवाइयां देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, कुछ असर ही नहीं करते। ये तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है क्योंकि जो वायु प्रदूषण हमारे लंग्स में जाते हैं।
0: जी।
1: लेकिन इससे भी ज्यादा जो अहम है वो है हमारे सिस्टम पे क्या इफेक्ट करता है। जो वायु प्रदूषण जो होता है वो एक तो पार्टिकुलेट मैटर होता है, जिसको हम PM 2.5 कहते हैं, जो आजकल सब जानते हैं। उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, लेड होता है। इन सबको मिला के जो एक नंबर हम देते हैं वो कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI। तो ये जो AQI जो

0: है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका कि मैं एक सदस्य हूँ एक्सपर्ट कमेटी का, 99% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ना वो वर्ल्ड एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अंदर नहीं रहती है, और उसमें इंडिया तो बहुत ही आगे है। अब इसका असर ये हुआ है कि एक शिकागो की स्टडी आई थी 2 साल पहले कि भारतीयों का जो जीवन काल है वो 5.3 साल कम हो रहा है सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से। वो इसलिए कि वायु प्रदूषण न सिर्फ खांसी करता है बट एक COPD बीमारी होती है, ये अस्थमा करता है, ये लंग कैंसर भी करता है, हार्ट अटैक्स भी करता है और तरह तरह के कैंसर्स भी करता है। तो ये सब
1: जी। तो श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं आज पर्यावरण के बारे में कि किस तरह से बहुत मुश्किल हमारे लिए हो सकती है कि अगर हम समय पर जागरूक नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं इस बात के। अगर पॉल्यूशन को नियंत्रण करें तो हो सकता है कि स्थितियां कुछ सुधर जाएं, क्योंकि हम आजकल ये देखते हैं कि जो लगातार हम कहीं आना जाना होता है तो गाड़ियों से जाते हैं, घर में तमाम ईंधन के साधन वो प्रयोग होते हैं, जितने भी साधन ईंधन के हो सकते हैं हम सबका समुचित उपयोग करते हैं ये समझे बिना कि अगर थोड़ा सा नियंत्रण करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है और स्थितियां दिन ब दिन किस तरह से बिगड़ रही हैं ये हम सब देख पा रहे हैं। और डॉक्टर साहब लगातार हमें जागरूक कर रहे हैं कि यदि हम संभल जाएंगे तो हमारी स्थिति किस तरह से बदलती जो जा रही है वो संभल सकती है, क्योंकि अभी अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वायु प्रदूषण की वजह से फेफड़ों की बीमारी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे?
0: हाँ, तो मैं जो बात कर रहा था वो कि जब अगर इंडिया की बात करें तो वायु प्रदूषण जो है ना ये मोटर व्हीकल से सबसे ज्यादा आता है
1: जी,
0: लकड़ी कोयला जलने से बहुत है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो होता है।
1: डॉक्टर साहब, एक एक घर में 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं, कहीं ये लोगों को ये सोच नहीं बन पा रही है कि किस तरह से इस बात को समझें कि ये जो दुरुपयोग हो रहा है चीजों का ये कहीं ना कहीं हमें मुश्किल में डाल सकता है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। या अगर घर में 4 जने हैं तो 4 की जगह 5 गाड़ियां भी होती है, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं
1: जी।
0: कोई भी ये नहीं सोचता कि 3 जने साथ मिलके जाएं, एक ही जगह जाना हो तो सब लोग अलग अलग, और गाड़ियों का वो बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है
1: जी।
0: 40-50 साल पहले एक मारुति 800 गाड़ी होती थी, वही एक सबसे पॉपुलर कार थी, आज SUV इतनी है। और दूसरा डीजल का जो उपयोग हो रहा है उससे भी वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है।
1: तो ये फेफड़ों के लिए डॉक्टर साहब किस तरह से हानिकारक है कुछ विस्तार से बताएं, क्योंकि लोग समझते तो हैं लेकिन जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, और आज के दिन हमारा विशेष प्रयास यही है कि समझें कि जिम्मेदारी हमारी अपनी है।
0: तो जहाँ तक फेफड़ों का प्रश्न है कि जो जैसे हम बच्चों के शुरू करते हैं, जो जैसे दिल्ली NCR के जो बच्चे हैं, हर तीसरे बच्चे को आज अस्थमा है, हर जिस घर में 2 बच्चे हैं अमूमन सबके पास नेबुलाइजेशन मशीन है, क्योंकि बच्चों को खांसी होती रहती है और दमा होता रहता है। और एक रिसर्च हुई थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जिसमें देखा गया कि जो दिल्ली के जो स्कूल के बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल के, उनके लंग फंक्शन साउथ इंडिया के बच्चों के बनस्पत कमजोर है। ये दर्शाता है कि जो वायु प्रदूषण का जो इफेक्ट है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है, और एक तो एस्थमा बहुत कॉमन होता है और दूसरा एक ब्रोंकाइटिस होती है जिसको हम COPD कहते हैं, वो अंग्रेजी में कहूँ तो 3rd leading cause ऑफ डेथ है पूरी दुनिया में
1: जी।
0: तो पहले हम जब पढ़ा करते थे तो 90% ब्रोंकाइटिस स्मोकिंग की वजह से होती थी, लेकिन अब जो है 50% ब्रोंकाइटिस जो है वो वायु प्रदूषण की वजह से होती है। और एक बहुत बड़ा कारण है न सिर्फ डेथ का, लेकिन एक बार जिसको COPD हो जाती है उसका हमारे पास कोई पक्का पुख्ता इलाज नहीं होता, फिर वो आदमी खांसता ही रहता है, फिर ऑक्सीजन पे चला जाता है। इसके अलावा लंग कैंसर की बात करें तो पहले हम जब पढ़ा करते थे कि 90% लंग कैंसर सिर्फ स्मोकर्स में ही पाया जाता है, लेकिन आज जो है 40% लंग कैंसर जो है वो नॉन स्मोकर में होता है, वो भी प्रदूषण की वजह से। और इस लंग जो कैंसर जो है की डेथ्स होती है, लंग कैंसर उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नंबर 1 कॉज है मॉर्टेलिटी का। तो ये लंग कैंसर

0: सर, एस्थमा और ब्रोंकाइटिस और निमोनिया,
1: जी
0: ये चार चीजें हैं जो वायु प्रदूषण से होती हैं। तो इसलिए हमें समझना है आज के दिन कि हमें जो एक्टिविटीज हैं, चाहे वो हम गाड़ियां चलाते हैं या कोयला जलाते हैं या घर में लकड़ी जलाते हैं, जब जब सर्दियां आ जाती हैं तो बाहर बैठ के कागज टायर कुछ जलाते हैं। उसके अलावा जो अनुराधा जी, जो आज दिल्ली में देखूं तो हर चौथा घर कंस्ट्रक्शन चल रही है,
1: जी जी
0: उससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, उसके उससे भी बचाव होना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर हैं, जान लेते हैं कि उनका क्या सवाल है। जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताएं सर क्या जानना चाहते हैं।
2: हाँ, मैं उत्तराखंड से रघुवीर जी बोल रहा हूँ।
1: जी रघुवीर जी बताएं क्या सवाल है आपका।
2: तो मुझे तो थोड़ा अपना ये पर्यावरण से संबंधित आपसे ही कुछ बात करना है ना।
1: जरूर, आज का विषय वही है
2: तो
1: और डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको।
2: हाँ, तो मेरा थोड़ा सा सुझाव है। तो जहाँ तक ये जो स्वास्थ्य के बारे में, जो जहाँ तक ये प्लास्टिक की जो जो खाली बोतल हम फेंक देते हैं, या मतलब
1: जी
2: तो उसके लिए कुछ सरकार को या कुछ मेडिकल जो वो हैं, जो मेडिकल संस्थाएं हैं, उनको एक प्रयास ये रहना चाहिए कि जो प्लास्टिक की बोतल लाएं और उन इनाम पाएं। तो कुछ मतलब जैसे कुछ ऐसे होना चाहिए
1: जी
2: मेरे ख्याल से,
1: जी
2: मैं आपसे ही बात करना चाह रहा हूँ।
1: जी बहुत अच्छा सुझाव है आपका, और ऐसे सुझाव ज़रूर हमारे श्रोता सुने और अपनाए भी, सिर्फ सुझाव ही ना दें हम उसे अपनाए भी। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे।
0: नहीं, बिल्कुल इन्होंने अच्छा बोला। अब आजकल क्या हुआ है कि जो बड़े बड़े होटल्स हैं, जहाँ पर वहाँ पर प्लास्टिक बॉटल्स अब नहीं रखी जाती, ग्लास बॉटल में ही पानी सर्व किया जाता है। लेकिन जो अमूमन जगह पे है, सड़क पे जो बोतलें होती हैं, आप सोचें जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं वो जब ट्रकों में जाती होंगी तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो चलती होंगी,
1: जी
0: तो वो पानी में भी माइक्रो प्लास्टिक चले जाते हैं उनमें। और तो ये जरूरी है कि न सिर्फ प्लास्टिक, बल्कि जो पॉलिथीन बैग्स होते हैं, जो डिस्पोजेबल बैग्स होते हैं, वो बहुत बड़ा एक कारण है। वो अल्टीमेटली पानी में जाते हैं,
1: जी
0: नदी नालों में जाते हैं, वो पानी फिर सो कॉल्ड प्यूरिफाई करके आता है, लेकिन उसमें उसके जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं वो रहते हैं। तो जरूरी है कि आदमी सब्जी लेने जाता है, सामान लेके जाता है, तो अपना कपड़े का बैग लेके जाए
1: जी
0: और ये प्लास्टिक की बॉटल्स यूज नहीं करे, और पॉलिथीन के जो बैग्स होते हैं उनको यूज नहीं करना चाहिए। और बहुत तरह से प्लास्टिक यूज होता है
1: जी
0: जो कि फेंका जाता है, और हम जो डिस्पोज करते हैं वो सेग्रीगेट तो नहीं करते। आप अगर विदेशों में जाएंगे तो हर घर में तीन तरह के डब्बे होते हैं। आपको कागज अलग से फेंकना होता है, जो पेरिशेबल होता है वो अलग से फेंकना होता है, लेकिन हमारे यहाँ सब मिक्स होके जाता है,
1: जी
0: और ये बहुत बड़ा। और वो क्या करता है, जैसे दिल्ली की बात करें तो भी जो भी हमारा वेस्ट होता है उसको जलाया जाता है, वो एक बहुत बड़ा कारण होता है पॉल्यूशन का। और मैंने जैसे शुरू में बोला, जिन्होंने ये बात नहीं सुनी हो, कि दिल्ली की हवा में माइक्रो प्लास्टिक्स जो होते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं, कैंसर करते हैं, ब्रोंकाइटिस करते हैं, तरह तरह की बीमारियां करते हैं, वो बहुत मात्रा में पाया गया है। ये एक रिसर्च हुई थी, तो मैं रघुवीर जी के सजेशन से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ और मानता हूँ कि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है।
1: जी
0: ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है कि सरकार ही इसको इम्प्लीमेंट करे, ये हर सिटीजन का,
1: दायित्व
0: हर
1: है जी
0: नागरिक का एक कर्तव्य है कि वो प्लास्टिक को यूज ना करे, पेड़ पौधे लगाए, और अननेसरली सर्दियों में जो है ना लकड़ी वगैरह बाहर बैठ के जो बोन फायर करते हैं और जलाते हैं उसको ना करें। अगर आपके गार्ड हैं, वो गार्ड बेचारे जब सर्दी में बाहर बैठते हैं तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, फिर वो फिर कुछ भी जलाते हैं, कागज लकड़ी जो उनको मिल जाता है।
1: जी
0: तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखें, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है।
1: जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। आगे की चर्चा हम जरूर करेंगे, पहले एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अनुराधा, और मेरे साथ डॉक्टर जी सी खिलनानी जी हैं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। यदि आप भी आज के विषय से जुड़ा कोई भी सवाल जानना चाहते हैं, उसका समाधान चाहते हैं, तो हमें कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 0112342108 और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहब, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आ चुके हैं, जिनमें से पहला मैसेज मैं ले रही हूँ, ये है पूजा खन्ना जी का, सुभाष नगर दिल्ली से। लिख रही हैं कि दिल्ली में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक आम नागरिक के तौर पर हम अपने घरों को बिना एसी के ठंडा रखने और अर्बन हीट आइलैंड के असर को कम करने के लिए क्या छोटे बदलाव कर सकते हैं?
2: ये पूजा जी, बहुत एप्रोप्रिएट, सही वक्त पे आपने सवाल पूछा है। पहले टेम्परेचर 43-44 तक नॉर्मली जाता था दिल्ली में, अब 46-47 पे भी जा रहा है। तो हर आदमी तो एसी अफोर्ड नहीं कर सकता, और हर जगह एसी चल भी नहीं सकते हैं स्कूलों में, और एसी चलाना भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसलिए गर्मी से बिल्कुल बचने के लिए पहले तो गर्मी के इफेक्ट क्या होते हैं ये समझना है हेल्थ के ऊपर। जब आपको गर्मी लगेगी, एक तो गर्मी लगती है, एक वो एहसास होता है कि अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन गर्मी लगने से डेथ भी हो जाती है, जिसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। लेकिन हीट स्ट्रोक होने से पहले आपको हीट एग्जॉशन होता है, मतलब आपको भूख लगना बंद हो जाती है, नौजिया होता है, वॉमिटिंग हो जाती है, फीवर हो जाता है, खाने को कुछ मन नहीं करता। ये सब होने के बाद धीरे धीरे ऐसे होता है, फिर बेहोशी आने लग जाती है, और उसके बाद कन्वर्जेंस भी आने लग जाते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन उससे बचने के लिए जरूरी है।

0: कि जब दोपहर का समय हो उस समय आप बाहर जाएं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप छतरी ले सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस समय आप कपड़े रंगीन ना पहने, कॉटन के लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे तो आपका हीट इफेक्ट, क्योंकि जो रंगीन काले कपड़े होते हैं वो हीट को बहुत एब्जॉर्ब करते हैं।
1: जी
0: उसके अलावा रेगुलरली आपको पानी पीना है। पानी का मतलब ये नहीं है कि आप आइस कोल्ड पानी सिर्फ पिए, नॉर्मल पानी जो है, हाइड्रेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरा ये होता है कि जब आपको ये जो सिम्टम्स हो जो मैंने आपको बताया, उस समय आपको बिल्कुल रेस्ट करना है। और उस समय तो जरूरी होता है कि आदमी ठंडे एनवायरनमेंट में, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में ठंडे पानी से नहा ले, तो
1: जी
0: आप हीट के इफेक्ट से बच
1: बच
0: सकते
1: सकते हैं
0: हैं।
1: जी।
0: और कुछ लोग ये भी करते हैं कि एसी जो अफोर्ड कर सकते हैं वो 19 डिग्री पे जो है ना एसी चला के खूब सोचते हैं, उसका मजा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब एकदम वो जब बाहर आते हैं तो वो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से भी बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं,
1: बिल्कुल जी
0: अस्थमा हो जाता, अटैक हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जो फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर है वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ लिक्विड इनटेक जो है ना वो एडिक्वेट होनी
1: होना
0: चाहिए उससे
1: चाहिए जी। डॉक्टर
0: बचने
1: साहब
0: के लिए।
1: आपसे बहुत कुछ जानेंगे, अभी एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताएं सर।
2: हेलो, मैं नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार जी,
0: नमस्ते
2: मैं मिसेस
1: जी,
2: बेदी बोल रही हूँ पंचकुला से।
1: बताएं क्या सवाल है आपका।
2: मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि जब ये जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स आप समझा रहे थे, तो ये जब शुरू ही होती है तो क्यों नहीं इनका बनना बंद किया जाता। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन, और ये जो स्लम्स हैं ये सब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, वो भी हमारी पोल्यूशन को बहुत बढ़ावा दे रही है। और एक मैं ये जानना चाहती हूँ, लोग कहते हैं ना कि ग्रीन हाउसेस बहुत बड़ी पोल्यूशन दे रहे हैं, मेरे को ये समझना है आपसे कि ग्रीन हाउसेस क्या होते हैं।
0: तो आपने बहुत सारे सवाल पूछे, मैं एक एक करके
2: हाँ
0: जवाब देते हैं। एक दो,
2: जी
0: पहली बात, जो प्लास्टिक बॉटल बनना बंद बंद होना चाहिए तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है और बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि प्लास्टिक एक यूजफुल चीज भी होती है, किसी किसी चीज में जरूरी भी होती है, लेकिन इसका जो डिस्पोजल होता है ना
2: हाँ जी
0: वो इम्पोर्टेंट है। अब आप जैसे कभी ट्रेन में जाते होंगे तो वहां लिखा होता है कि अपनी उसको डिस्ट्रॉय कर दें ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन करता कोई नहीं है। दूसरा ये है कि प्लास्टिक जो होता है वो उसका जो मिसयूज जो हो रहा है, जो ओवर यूज हो रहा है,
2: हाँ
0: हर चीज
2: जी
0: का यूटिलिटी होती है और एक मिसयूज होता है। कार का यूज होता है, आप चलाओ जरूरी हो चलाओ, लेकिन उसको खामखा चलाना, या कार आपकी धुआं मार रही है फिर भी आप उसको चलाए जा रहे हैं बिना चेक कराए, वो उसका मिसयूज होता है। तो प्लास्टिक का मिसयूज नहीं होना चाहिए। जहां तक आपने पॉपुलेशन की बात करी, मैं मानता हूँ इंडिया इस समय नंबर 1 पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड का, वो तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो और जो आप कह रहे हो कि स्लम्स में ओवर क्राउडिंग होती है, डेफिनेटली उससे हमारा पॉल्यूशन भी बढ़ता है, गंदगी भी बढ़ती है, लेकिन ये तो उसके लिए कोई मेरे पास कोई उसका कोई उपाय नहीं है। जो ग्रीन हाउस है वो वहां पे भी गैसेस निकलती है, लेकिन एक रिलेटिव टर्म्स में वो माइनर इशू है हमारे लिए। हमारे लिए जो मेजर इशू है वो है वायु प्रदूषण, प्लास्टिक, और जो पेड़ पौधे जो कम हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, और जो जंगल काटे जा रहे हैं और उनसे लकड़ी बनती है, कागज बनती है, और जो बिजली का ओवर यूज, स्पेशली गर्मियों में हम बिजली यूज करते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि बिजली बनती कैसे है? बिजली 90% से ज्यादा कोयले से बनती है,
1: जी
0: और वो जब कोयला जलता है उससे जो गैसेस निकलती हैं वो बहुत बड़ा हिस्सा होता है वायु प्रदूषण का।
1: बिल्कुल
0: तो इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने आप को संयम रखें, कार पूलिंग कर लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, जब आप कुछ सामान खरीदने जाए तो रीयूजेबल कपड़े के या जो भी बैग आपके पास है उसको लेके जाएं, प्लास्टिक को इधर उधर ना फेंके, अपने कचरे को सेग्रीगेट करके

0: सो दैट वो मिक्स ना हो
1: जी,
0: क्योंकि उन ये सब छोटी छोटी चीज करने से हम अपने जो दुनिया के जो बेहतरीन देश है जहाँ वायु प्रदूषण कंट्रोल में है वो सब इन चीजों का पालन करते हैं। जैसे आप सिंगापुर की बात करें, बहुत एक्सपेंसिव है, आप कार वहां रख ही नहीं सकते क्योंकि उसके टैक्सेस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए लोग वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करते हैं। तो सिंगापुर की जो एयर क्वालिटी है वो वन ऑफ द बेस्ट है।
1: जी।
0: ऐसा नहीं है कि वहाँ पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन इंडिया जैसी नहीं है, पर है पॉपुलेशन, लेकिन कार बहुत कम लोगों के पास है
1: जी।
0: और कार की जो क्वालिटी है, फ्यूल क्वालिटी और इंजन क्वालिटी, उसका स्ट्रिक्ट उसका एक्शन होता है, स्ट्रिक्ट उसका पालन होता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं
1: जी,
0: ये हम लोग मैनमेड प्रॉब्लम है हमारी।
1: डॉक्टर साहब, एक बात और देखने को सामने आती है कि बढ़ते तापमान की वजह से त्वचा की बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, ये किस वजह से है और कैसे इस पर नियंत्रण हो?
0: नहीं, त्वचा की बीमारियां स्पेशली हीट से नहीं होती है, हीट से थोड़ी उसमें बर्निंग होती है, लेकिन त्वचा की बीमारियां भी एक तो एलर्जिक कंडीशन ज्यादा होती है उससे, और दूसरा वायु प्रदूषण से भी उसमें इचिंग होती है। लेकिन मैं डर्मेटोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन स्किन की इचिंग का कारण होता है वायु प्रदूषण, अदरवाइज इसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है। डायरेक्ट इफेक्ट लंग पे, हार्ट पे, ब्रेन पे, हमारी जो धमनियां होती हैं, ब्लड वेसल्स पे, किडनी पे, इंटेस्टाइन पे, इन पे ज्यादा होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक मैसेज हमारे पास आया हुआ है नरदेव सिंह चौहान जी का, कोटद्वार उत्तराखंड से, लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का एक पेड़ माता के नाम कितना उपयोगी है, दूसरा अत्यधिक शहरीकरण प्रदूषण का मेन कारण है, व्यक्तिगत क्या प्रयास किए जाने चाहिए?
0: नहीं, दोनों बातें बिल्कुल सही है। डिफॉरेस्टेशन जिसको कहते हैं जो हो रहा है वो एक बहुत बड़ा कारण है हमारा पॉल्यूशन का, तो हर सब कहते हैं कि आप पेड़ लगाओ। दूसरी बात क्या बोली, सॉरी?
1: उनका ये कहना है कि शहरीकरण जो हो रहा है उसकी वजह से कितना नुकसान है आज?
0: शहरीकरण तो जो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन उसका तो बहुत ही, अब जैसे अब ऐसे भी शहर हैं जहाँ पीतल की इंडस्ट्री बहुत का प्रचलन है, वहाँ पीतल को गलाया जाता है और उसके सुंदर सुंदर चीजें बनाई जाती हैं, तो उस शहर में न सिर्फ लंग की कंडीशन ज्यादा होती है, ट्यूबरक्लोसिस भी ज्यादा होती है
1: जी,
0: इन्फेक्शन भी ज्यादा होते हैं। तो जो शहरीकरण है उससे ये सब जो आर्टिफिशियल चीजें हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है, जब गाड़ी होगी तो गाड़ी धुलने की भी सर्विस स्टेशन भी होते हैं, तो इस तरह से वर्कशॉप्स भी होती हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा एमिशन होता है। तो शहरीकरण से तो फर्क पड़ता ही है, जितना आप शहर से दूर रहेंगे
1: जी,
0: उतना आप वायु प्रदूषण से बचे रहेंगे। मतलब अगर आप उत्तराखंड में चले जाए, पहाड़ों पे चले जाए, पिथौरागढ़ चले जाए, तो डेफिनेटली वहाँ वायु प्रदूषण कम होता है, इसमें तो कुछ।
1: गांवों की जो आबो हवा है आज भी शुद्ध है, डॉक्टर साहब ऐसा कहना चाहेंगे?
0: सॉरी,
1: मैंने कहा आज भी जो गांवों की आबो हवा है वो शुद्ध है वनस्पत शहरों के?
0: गांवों की नहीं, जो जो पहाड़ी एरिया है ना जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम है और पेड़ ज्यादा है
1: जी,
0: गाँव में तो फिर और दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स होती है। वहाँ भी जो फॉसिल फ्यूल जो कहते हैं लकड़ी वगैरह कोयला खूब जलता है और आपको पता ही है क्रॉप बर्निंग होती है, तो वहाँ कितना बुरा हाल होता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसमें डेंसिटी कितनी है और वहाँ का लाइफस्टाइल क्या है
1: जी।
0: लेकिन डेफिनेटली आप अगर अब दिल्ली तो कैपिटल है एयर पॉल्यूशन का, सब जानते हैं, तो पर हर शहर दिल्ली नहीं है, कुछ शहर अच्छे भी ऐसे भी है जहाँ जैसे इंदौर को सबसे क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है, तो वहाँ के लोगों में बहुत जागरूकता है। वहाँ अगर आप कागज फेंकेंगे सड़क पे तो कोई आपको टोकेगा जरूर
1: जी।
0: तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है, इसको हमें पालन करना चाहिए
1: जी। पेड़ लगाएं, ये तो हम संदेश दे ही रहे हैं, साथ साथ छोटी छोटी बातें हैं श्रोताओं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर साहब लगातार हमें जागरूक कर रहे हैं। और अब सुन लेते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत जिसमें पूरा पर्यावरण का जिक्र आपको मिलेगा।

जब ऐसे पेड़ झूमते रहेंगे तो आपका जीवन भी झूमता रहेगा, क्योंकि ज़रूरी इसलिए है पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारा जो वायुमंडल है वो भी स्वस्थ रहे और हम भी स्वस्थ रहें। जी हाँ, आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं पर्यावरण दिवस पर। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जी सी खिलनानी जी। यदि आपका भी इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 0112342108 और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए भी नंबर आपको बता देते हैं, नंबर है 9868107070। तो डॉक्टर साहब, अब जो समस्या इस समय बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है वो है नॉइस पॉल्यूशन। इसकी वजह से क्या

0: मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं।
1: तो नॉइस पॉल्यूशन जो है ना, वो भी एक समस्या है जिसको कि बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता।
0: जी
1: नॉइस पॉल्यूशन की वजह से एक तो आदमी की नींद डिस्टर्ब होती है, और नींद बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जो हियरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी ज्यादा उससे होती हैं, और कंसंट्रेशन आदमी की जो होती है किसी भी काम में वो भी अफेक्ट करती है। लेकिन कोई भी इसको मेजर नहीं करता, कोई भी इसका ध्यान नहीं देता,
0: जी
1: क्योंकि लाइफ में इसका लोगों को ज्ञान भी नहीं है और इसकी इम्पोर्टेंस को समझना भी बहुत जरूरी है। तो आपने बहुत अच्छा, ये भी एक पर्यावरण का हिस्सा है जो नॉइस है, एयर के अलावा, वाटर के अलावा, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और हमें जो एक्टिविटीज जो है ना बहुत ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, कई लोगों को शौक होता है कि अपनी मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल के जो है ना गाड़ियां चलाते हैं, या कई जगह, कई शहरों में अभी भी इंडस्ट्रीज जो है ना वो शहर के बीचों बीच होती है, तो उसकी बड़ी आवाजें होती हैं, तो वो सब और जो व्हीकल्स होती हैं उसकी आवाज तो होती ही है, तो ये नॉइस का भी जो है ना इम्पोर्टेंट है।
0: जी, इस विषय पर आगे और चर्चा करेंगे। अभी एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी, आपका स्वागत है, अपना नाम बताएं सर।
2: हाँ मैडम, मैंने पहले बात किया रघुवीर जी, फिर मैं दोबारा डॉक्टर साहब से एक थोड़ा क्वेश्चन
0: जी
2: का
0: बताएं।
2: जो उसको मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से ना।
0: जी
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब सुन
2: हेलो
0: रहे हैं, सवाल
2: डॉक्टर
0: करें।
2: साहब।
1: हाँ मैं सुन रहा हूँ।
2: हाँ, मैं जो वो आपने कहा कि जो ये प्लास्टिक की बोतल के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना, तो थोड़ा सा मैं पहाड़ में रहता हूँ, इधर उत्तराखंड का हूँ मैं, तो जैसे मतलब मैं किताबी बातें नहीं कर रहा हूँ। अब जैसे मतलब ये है कि जैसे पन्नी है, जैसे ये बोतल है, या प्लास्टिक के जो कोई और जैसे मतलब जो यूज नहीं होते हैं, तो ये क्या होते हैं कि बरसात में नदी में बह जाते हैं, तो वो कहाँ चले जाते हैं? समुद्र में। जब ये समुद्र में जाएंगे तो जीव जो वहाँ के जो जो उसमें जीव जीव हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। अब दूसरी बात, आपने बोला डॉक्टर साहब कि ये जो प्लास्टिक को जो कलेक्ट करने का काम या इसको, ये तो आम सब लोगों का काम काम है, हम सब लोगों का। अब जब मैं अपने ऊपर की बात करता हूँ कि मैं जो प्लास्टिक इकट्ठा करूंगा तो उसको जलाने से
0: जी
2: नुकसान है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ डॉक्टर साहब?
1: तो दो आपने दो बातें कही। एक तो ये है कि जो जो भी चीज जैसे प्लास्टिक पानी में जाता है, या पेस्टिसाइड्स पानी में जाते हैं, या एक्सक्रीटा पानी में जाते हैं, एक तो पानी का प्रदूषण होता है, वही पानी कल्टीवेशन के लिए भी यूज होता है, वही पानी जो फिश होती है, जो मछली वगैरह जो है वो भी उसको यूज करती है, तो फिर आज जो लोग फिश खाते हैं तो वो प्रदूषित फिश खाते हैं। तो इसका फार रीचिंग इम्प्लीकेशन होते हैं। तो जरूरी है कि ये जो अभी जो यमुना और नदियां हमारी प्रदूषित हो गई हैं, इसका सिर्फ विजुअल वो नहीं है कि वो गंदी लगती है, उसका बहुत सारा इम्पैक्ट है, क्योंकि वही पानी पिया जाता है, चाहे वो प्यूरिफाई करते हैं, लेकिन उसके प्यूरिफायर में ये सब माइक्रो प्लास्टिक्स वगैरह प्यूरिफाई नहीं हो पाते हैं, इसलिए उसका जो है ना वो पूरा ध्यान रखना चाहिए।
0: जी बताएं डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी इन्होंने जिक्र किया, तो इन्होंने नदी का भी जिक्र किया, तो जो नदियों में पॉल्यूशन हो रहा है उसका कितना असर पड़ सकता है लोगों पर?
1: नहीं, बहुत असर पड़ता है, वही मैंने बोला, जो नदियां बहती हैं उसके उसमें लोग जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जिसको कहते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती है वो उसका वेस्ट जो है ना वो सेव उनके लिए बहुत सस्ता होता है कि उसमें बहा देते हैं, और सब लोग उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा भी होता है, सब कुछ होता है, यूरिन भी पास करते हैं उसमें, क्या क्या नहीं करते। तो ये सब जो है ना नदियों का प्रदूषण, ये पानी कहाँ जाता है, ये मछलियां इस्तेमाल करती हैं, यही पानी कल्टीवेशन के लिए भी यूज होता है, जिससे सब्जियां उगाते हैं लोग, फल उगाते हैं, और फिर यही पानी जो है वो सो कॉल्ड प्यूरिफाई करके वो पीने के लिए जो हमारे नलों में आता है, तो वो प्यूरिफिकेशन में

0: कुछ चीजें तो साफ हो जाती हैं, जैसे माइक्रो प्लास्टिक है, पेस्टिसाइड्स है, ये पूरी साफ नहीं हो पाती। हालांकि वो बैक्टीरिया फ्री हो जाते हैं, इन्फेक्शन फ्री हो जाते हैं, पैरासाइट फ्री हो जाते हैं, तो वो हर चीज उस जो हमारे प्रेजेंट इक्विपमेंट है वो प्यूरिफाइड नहीं होते, तो इसलिए ये पानी हर जगह जाता है, खाने में जाता है, हमारे पीने के लिए जाता है। तो नदियों को साफ रखना,
1: बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी
0: बनाए रखना, तो बात वहीं पे आ जाती है अनुराधा जी के पर्यावरण को स्वच्छ रखने का जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है
1: जी।
0: हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम हर चीज ऐसी करें जिससे कि पर्यावरण पे हमें व्यक्ति विशेष पे असर पड़े वो एक अलग बात है, लेकिन अगर पर्यावरण खराब होगा तो नुकसान तो सबको होता है,
1: सबको होता है जी, क्योंकि हम कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं वो कड़ी आके वापस हमसे जुड़ जाती है।
0: ये जनरेशनल होता है
1: जी, बिल्कुल।
0: जेनेटिक चेंजेस भी आते हैं, फर्टिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है, स्पर्म की क्वालिटी पे असर पड़ता है, फीमेल की जो आज आप देख रहे हो IVF हर जगह दुकानें खुली हुई है, नेचुरल वो ये फर्टिलिटी पे भी पर्यावरण का इफेक्ट पड़ता है
1: जी। डॉक्टर साहब, हमारे एक श्रोता है वो मैसेज कर रहे हैं गैंगटोक सिक्किम से, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा, लेकिन हम लगातार चर्चा कर रहे हैं फिर भी ये जानना चाहते हैं कि लोगों की कम से कम 5 कुछ ऐसा बताएं जो लोगों की जिम्मेदारी बने पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए।
0: ये तो रिपीटेशन होगा अनुराधा जी, जो सबसे पहली बात तो ये है कि
1: जी अगर संक्षेप में कहना चाहे इनकी बात को रखते हैं,
0: संक्षेप में जैसे आप स्कूटर की जगह साइकिल चलाएं या कार पूलिंग कर लें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट करें, ये सबसे एक तो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द एयर पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। सब आदमी अपने घर पे जिसको सुविधा हो वो पेड़ उगाए। तीसरी बात ये है कि आप जो है ना जो
1: सर इंडोर प्लांट्स भी कितना असर करते हैं, आजकल देखा जाता है कि किचन गार्डनिंग होती है और इंडोर प्लांट्स लगाते हैं, क्या उसका भी स्वास्थ्य पर अच्छा असर होता है?
0: इंडोर प्लांट्स का जो है मिनिमल इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे देखे गए हैं कि जो कि एयर को थोड़ा प्यूरिफाई करते हैं, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण बहुत ज्यादा हमारे
1: नहीं
0: पास
1: है। जी
0: हमारे
1: जी।
0: पास नहीं है, तो कोई ये ना सोचे कि 2 प्लांट आपने अपने लिविंग रूम में या जिसको ड्राइंग रूम में लगा दिए तो आपकी हवा स्वस्थ हो जाएगी,
1: जी ऐसा नहीं,
0: वो बिल्कुल नहीं है
1: जी।
0: उसके अलावा जो है आप जब सामान खरीदने जाते हैं तो रीयूजेबल बैग जो है ना हमेशा यूज करें, और उसके अलावा जो है आप जो बाहर जो बेकार की चीजों को जला देते हैं उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी भी सर्दी हो तो आदमी कुछ लकड़ी वकड़ी जला के कागज जला के हाथ सेकते हैं, वो टायर भी जला देते हैं, कुछ भी वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कागज का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, बिजली को बचाना चाहिए अपने घर में। अगर ऐसे नहीं कि बिल बिजली का बिल ठीक है आता है, लेकिन बिजली वो जैसे मैंने कहा कि तो बिजली आती कहाँ से, वो कोयले से आती है, तो इसलिए बिजली का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं 5 की जगह 10 बता सकता हूँ
1: जी, लेकिन ध्यान हमें खुद को रखना है, ये बात लगातार हम लोगों को बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार सर, शुभ नाम बताएं अपना।
2: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, मैं रघुवीर सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ उत्तराखंड से।
1: जी बताएं।
2: मैं ये पूछ रहा था डॉक्टर साहब से कि जैसे कि पर्यावरण में जैसे कि हमें कोई ऐसे इक्विपमेंट मिलते हैं कि हम जैसे हवा की शुद्धता नाप सके, जैसे हम तो सांस ले ही रहे पर हमें क्या पता कि हवा दूषित है या प्रदूषित है
1: जी।
0: तो ठाकुर साहब, नापने के तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन अब जो हमारी जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है वो पहले जब मैंने ये रिसर्च शुरू करी थी 1991 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, तो बहुत थोड़े मॉनिटरिंग स्टेशन होते थे। कुछ ही शहरों में जो है ना जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मॉनिटरिंग होती है, PM2.5 भी बहुत कम मॉनिटर होता था, लेकिन अब तो हर शहर में हर डिस्ट्रिक्ट में

0: प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है और वो वेबसाइट पे मौजूद भी होता है। जो छोटे छोटे जो मशीनें होती हैं जो कि बाजार में मिलती हैं AQI नापने की, वो इतनी रिलायबल नहीं होती है, उस पर आपको नहीं जाना चाहिए। और जो जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो वेबसाइट पे या पब्लिकली जाता है, वो ज़्यादा रिलायबल होती है एयर पॉल्यूशन मेजर करने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, आज का जो जीवन है उसमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, सभी की अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं। ऐसे में पर्यावरण से जुड़ाव कैसे हो और कितना लाभकारी होगा उनके लिए?
0: नहीं, सबके लिए लाभकारी होगा। जो पिछले 1 घंटे में हमने जो बातें करी हैं वो बहुत अहम है। और दूसरा, लास्ट में मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई ये ना सोचे कि वायु प्रदूषण सिर्फ दिल्ली NCR की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ही ज्यादा हाईलाइट होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। अगर आप पूरे भारत के मैप को देखेंगे, इवन जो जहाँ पर समुंदर है, जैसे मुंबई है जिसको कहते थे समुंदर की वजह से एयर पोल्यूशन, वहाँ भी AQI 200-300 तक पहुँचता है, और उत्तर प्रदेश की तो क्या ही बात करें। तो ये सारा कंट्री में जो वायु प्रदूषण जो नहीं भी इतना हाईलाइट होता, ये सब जगह है। तो कोई ये इम्प्रेशन ना ले कि ये दिल्ली की या नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है, ये सबकी प्रॉब्लम है। इसलिए सबको ही इसी तरफ ध्यान देना चाहिए और सबको उस तरफ कदम, जो हमने थोड़ी थोड़ी बातें बताई हैं, उसको ध्यान देंगे तो ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: जी, आपका कहना है कि हम सब जिम्मेदार हैं पर्यावरण को स्वस्थ बनाने के लिए या अस्वस्थ बनाने के लिए। तो हम जागरूक होंगे तभी
0: जी
1: पर्यावरण
0: बिल्कुल,
1: स्वस्थ
0: जी
1: रहेगा।
0: बिल्कुल,
1: तो डॉक्टर साहब, बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता हैं उनको ज़रूर पसंद आई होगी। श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा या किस विषय पर आप रेडियो डॉक्टर में डॉक्टरों से परामर्श चाहते हैं, इसके बारे में आप अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हम तक भेज सकते हैं। उसके लिए ईमेल आईडी है health@delhi.gmail.com। तो बहुत सारी आज हमने चर्चा की है डॉक्टर साहब, और चलते चलते अगर कोई संदेश आप हमारे श्रोताओं को देना चाहें।
0: नहीं, चलते चलते यही संदेश है कि नेचर को हमारी जरूरत नहीं है, हमें नेचर की जरूरत है,
1: जी
0: हमें हमें नेचर की जरूरत है, इसलिए उसको संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी है।
1: जी
0: और हम अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो ये ठीक रहेगी, नहीं तो अगर हम ये सोचेंगे कि कोई और इसको ठीक करेगा तो ये नहीं हो पाएगी। धन्यवाद,
1: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर संदेश डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में
0: आपका
1: हमारे
0: धन्यवाद
1: साथ
0: अनुराधा।
1: जी
0: थैंक यू
1: हमारे श्रोताओं तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, पहुंचाने के लिए और उनको जागरूक करने के लिए। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर GC खिलनानी, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन PSRI हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, जिनसे आज हमने चर्चा की विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष रूप से। उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अब चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि अपनी जिम्मेदारियों का बोध ज़रूर करिए, क्योंकि हम सिर्फ दोहन करते हैं प्रकृति का, लेकिन उसको हम देते कुछ नहीं है। देने का प्रयास करें, सिर्फ लेने का प्रयास ना करें, और यही वजह रहेगी कि पर्यावरण स्वस्थ रह पाएगा और हम सब स्वस्थ रह पाएंगे। तो उम्मीद है कि आज आप संकल्प जरूर ले लेंगे पर्यावरण को स्वस्थ रखने का। तो अब अनुराधा को दीजिए आज का रेडियो डॉक्टर समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है लव यू जिंदगी। प्रोग्राम विच आज बड़ी खास गल हो रही है किंग ऑफ पेज से, यानी कि दीदार सिंह गिल होना दी। गल की मैं कि उन्होंने इतनी जमीन खरीदी अमेरिका के, दैन उत्थे पीच नाया यानी कि आड़ू की फसल की। यह सफ़र बहुत मुश्किल से, खेतीबाड़ी विच हमेशा जोखम हुंदा है। कई बार खराब मौसम, बेवकती मीह या फसलों की बीमारी कारण उन्होंने भारी नुकसान झलना पैंदा है। तो एक समा अजिहा भी आया जदों लगता सी कि सब कुछ जिहड़ा है ना वह ख़त्म हो गया या बर्बाद हो जाएगा, पर पंजाबी फलसफा चढ़दी कला उन्हां दे अंदर वसिया होया सी। उन्हां ने हार मनन दी बजाय ना दुगनी मेहनत नाल दुबारा काम शुरू किया। उन्होंने आड़ूआं दी अजिही किस्म तैयार की जो बेहतर अते लंबे समय तक खराब नहीं होंदी। हौली हौली की हुंदा है दोस्तों कि दीदार सिंह गिल दे ना बागां दा दायरा जिहड़ा ना वधदा गया, उहदे बाग बहुत ज़्यादा हो गए। कुछ सालां विच ही वह कैलिफोर्निया दे सब तो वड्डे आड़ू उत्पादक बन गए। उन्होंने खेतों में पैदा होने वाले आड़ू पूरे अमेरिका के सुपर मार्केटों में सप्लाई होने लगे से। अमरीकी मीडिया और उत्थों की सरकार ने उन्होंने इस कामयाबी को देखते हुए उन्होंने अधिकारित तौर पर पीच किंग का खिताब दिता सी। वो अमेरिका के खेतीबाड़ी खेत्र में सब तो प्रभावशाली व्यक्तियों में एक बन गए। जी हाँ, ये है दोस्तों असली मिसाल कुछ करन दी, जज्बा साबित करन दा कि बहुत कुछ हो सकता है जो दुनिया कवे कुछ नहीं हो सकता। दीदार सिंह गिल दी जिंदगी हर उस व्यक्ति लिए एक मिसाल है जो अपने सुपने पूरे करना चाहता है। सो दीदार सिंह ने अमेरिका जाके कोई नवा काम नहीं लभिया से, बल्कि उसे खेतीबाड़ी नू चुनिया जो पंजाब की रूह है। अपनी मूल काबिलियत नू पछानना ही सफलता की पहली पौड़ी है। सो एक दिहाड़ीदार मजदूर तो सफ़र शुरू करके किंग बनना यह सिखाउंदा है कि शुरुआत भावें किन्नी भी छोटी होवे, तुहाड़ी सोच अते मेहनत वड्डी होनी चाहिए है। पंजाबी सभ्याचार सानू मुश्किलों विच भी हसदे रहना अते अगे वधना सिखाउंदा है। नुकसान होने ते भी हार ना मनना ही उन्हां दी सब तो वड्डी ताकत सी। सो अनजान देश, अनजान भाषा अते बिना किसी सिफारिश के सिर्फ अपने किरदार दे नाल उन्होंने इन्ना वड्डा मुकाम हासिल किया जो शायद उन्होंने भी कदी नहीं सोचा होना। उन्होंने ये नहीं सोचा सीगा कि वो इतों तक पहुँच जाएंगे, पर उन्होंने ये जरूर सोचा सी कि जिंदगी विच जरूर कुछ करेंगे। सो दोस्तों, सिट्टा बस यही निकलता इस कहानी का कि दीदार सिंह गिल की यह असल कहानी साबित करती है कि पंजाबी जिथे भी जाते हैं अपनी मेहनत नाल उस धरती को सोना बना देंगे। उन्होंने ना सिर्फ अमेरिका विच करोड़ों का कारोबार खड़ा किया, बल्कि उत्थे जाके सिखा ते पंजाबियों का मान सम्मान भी बताया। ये कहानी अज के नौजवानों नू प्रेरणा देती है कि जेकर इरादे नेक होन अते मेहनत सच्ची होवे तो दुनिया का कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, एप्रीकोट आड़ू की फसल करना कोई सोच नहीं सकता, मैं लगता आम चीज़ से

सोचिए, दीदार सिंह गिल एक आम इंसान तो बहुत खास इंसान बने, इस करके तुसी भी अपनी जिंदगी विच आम इंसान तो बहुत खास इंसान बन सकते हो जे तुसी चाहो। तां लाइफ दे विच मुश्किलां नूं ज़्यादा अपने ते हैवी ना होण दवो, तुसी खुद मुश्किलां च हैवी हो जाओ ते मुश्किलां भी सोचण लगे यार किहो जिहा बंदा है, हार ही नहीं मानता, इह तां मेरे तों डरदा ही नहीं है। बस ये हुंदी ना गल, फिर गल बनदी इसी तरीके दे नाल है जदों असी कुछ करते हैं अपने नाल। हुण मैं तुहाडे सारिआं दीआं गल्लां जो आपां कीतीआं या यादां जो जो समां असीं बिताया वह लै के जा रही हूँ मैं भी, क्योंकि मैं भी बहुत सारा मोटिवेट हुई हूँ तुहाडे सारिआं तों। उम्मीद करदी हाँ कि तुसीं भी मेरे नाल जुड़ के मेरे प्रोग्राम्स नूं इंजॉय कीता होएगा और अपनी जिंदगी विच कुछ बदलाव लिए जरूर सोचा होएगा, खास तौर पर आदतों वाली गल्लां। जी हाँ, अपनी आदतों नूं जरूर सुधारिया होएगा। इस करके तुसीं अपनी जिंदगी विच हमेशा अपने आप नूं प्यार करते रहो, सैल्फ लव करना बहुत जरूरी है, खुद नूं प्यार करना। सब तो पहले शुरुआत करो चंगी सेहत तो, जे थोड़ी चंगी सेहत होएगी ना फिर तुसीं कुछ भी हासिल कर सकते हो, हर एक चीज़ तुसीं हासिल कर सकते हो, चाहे वह जिहड़ी मर्जी होवे, हर सुपना पूरा हो सकता है, पर चंगी सेहत पहला जरूरी है। फिर अपने आप नूं प्यार करो, अपनी हॉबीज़ नूं पूरा करो, हर एक छोटी मोटी चीज़ जो तुहानूं खुशी दिंदी है वो करो, अपने आप नूं खुश पहला रखो फिर दूजिआं नूं खुश करन दे बारे सोचिया करो। इस करके गर्मियां दा मौसम है, मैं पहला भी कहा सी, अपना ध्यान जरूर रखो। अगर तुसीं हल तक आड़ू नहीं खाधा ना, जाके पहला आड़ू खा लो क्योंकि किंग पीच किंग तुहानूं पता है ना, फिर मैंने आड़ू कैलिफोर्निया दे विच अमेरिका विचों खा दिते ते फिर सोचो फिर साडा तां टेस्ट करना बनदा है ना। गर्मी दे मौसम दे विच वैसे बड़ा चंगा हुंदा, पर हाँ ज़्यादा ना खाइओ, एक ही खाली हुई बहुत है, गर्म भी बड़े होंगे। सो हुण तुहाडी दोस्त जिहड़ी ना अज सुरबीर जा रही है, दिल तो मेरा नहीं कर रहा पर अगले आर जे पहुँच चुके ने जी अपने शो नू लै के, वह भी फिर अपने नाल तुहाडे नाल बड़िया सारिया गल्लां करनगे, वधिया वधिया उन्होंने भी इंजॉय करियो। हुण मैनू सुरबीर नू इजाजत दो जी, रब रखा हमेशा हंसते रहो ते मुस्कुराते रहो। जाते जाते मैं एक बड़ा ही घेंट जिहा गाना लगा के चली हाँ, जरूर इंजॉय करियो।

नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात दे सूरत विच सड़क बिजली अते उद्योगी खेत्र नाल संबंधित 18,800 करोड़ तो वध दे कई विकास प्रोजेक्टा दा उद्घाटन किया अते नींह पत्थर रखिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा तेजी नाल वध रही है। अज विश्व वातावरण दिवस मौके उपराष्ट्रपति अते प्रधानमंत्री वल्लों देश वासियां नूं वातावरण सुरक्षा, पायदार जीवन शैली अते जैव विभिन्नता की संभाल प्रति अपनी वचनबद्धता नूं मजबूत करन दी अपील कीती। पंजाब समेत देश भर विच समागमां दा आयोजन कीता गया। पंजाब दे राजपाल अते चंडीगढ़ दे प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने देश व्यापी मुहिम एक पेड़ माँ के नाम तहत पंजाब लोक भवन विखे बूटे लगाने की मुहिम की अगवाई की। केंद्रीय राजमंत्री जतिंदर सिंह ने जम्मू विच नवे स्थापित खेतरी मौसम विभाग केंद्र का उद्घाटन किया। राज्यसभा मेंबर संत बलबीर सिंह सिचीवाल ने जलंधर विच सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तो सोधे हुए पानी नाल सिंचाई करन संबंधी प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्तीय साल विच मुख व्याज दरां नूं बरकरार रखिया। रैपो दर नूं 5.25% उत्ते बनाई रखण दा कीता फैसला। पंजाब राज महिला कमिश्नर ने लुधियाना विच 9 कुड़ियां दे लापता होण दीआं रिपोर्टां दा अपने पद्धर उत्ते नोटिस लिया। पुलिस तो जांच दी 8 जून तक वेरवे समेत रिपोर्ट मंगी गई। सीबीआई दी मोहाली अदालत ने करोड़ां दे बैंक धोखाधड़ी मामले विच एक व्यक्ति नूं 3 साल दी सख्त कैद दी सजा सुनाई। पंजाब पुलिस वल्लों विदेशी दहशतगर्दी समूह दे 2 साथियां नूं गिरफ्तार करन तो 1 दिन बाद अज 4 होर मुलजमां नूं 5 पिस्तौलां, 1 किलो तो वध हीरोइन अते 5 लाख रुपए दे ड्रग मनी नाल काबू कीता। पंजाब विच अमृतसर पठानकोट कौमी शाहराह उत्ते अज सवेरे वापरे एक सड़क हादसे विच इको परिवार दे 2 व्यक्तियां दी मौत, 14 जख्मी। अते नॉर्वे शतरंज दे 9वें दौर विच प्रज्ञानदा रमेश बाबू ने भारत दे ही विश्व चैंपियन डी गुकेश नूं हरा के अपनी खिताबी दावेदारी बरकरार रखी। इस घंटे दे एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। न्यूज़ हेडलाइंस दा अगला प्रसारण तुसीं सुनोगे रात 8 बजे। हुण तो कुछ इरादे इंतजार तो बाद दोस्तों तुसी सुनोगे प्रोग्राम फिल्मी दुनिया।

ती है। फिर फिल्म दी कहानी जड़ी है अगे वधदी है, जिस विच उस नूं इक केस जड़ा है मिलता है। केस दे विच इक जर्नलिस्ट दी जड़ी है मर्डर कर दिता जांदा है, ते उस केस दे ही आले दुआले घूमदी है कहानी। फिल्म दर्शकां नूं काफी पसंद आई, ते खास गल इस फिल्म दे गीत जड़े है उन्हां ने दर्शकां दा दिल जीत्या। इस फिल्म दे गीतां नूं आवाज़ दित्ती कुमार सानू ते साधना सरगम ने। ते लो जी फिर फिल्म दी गल होई है, मुकेश भट्ट साहब दा फिल्मां दे विच डेब्यू दी असीं गल कीती, ते फिर सुनदे हां गीत फिल्म जुर्म दा। पेश करन जा रही हां आवाज़ कुमार सानू ते साधना सरगम दी।

जीत गए। इस नाल ही इस फिल्म का जिहड़ा पोस्टर है वह भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया सी। पोस्टर की हुण गल इत्थे क्यों की है, क्योंकि इस फिल्म का जिहड़ा पोस्टर सी वह बाकी के ट्रेडिशनल पोस्टर दे नालों काफ़ी ज़्यादा अलग सी, क्योंकि मुकेश ने नवे चेहरे लए ते इस करके महेश भट्ट जो कि उन्होंने ब्रदर सन उन्होंने नवे चेहरिया ते जिहड़ा है ट्रेंच कोट जिहड़ा है वह पा दिता सी। यानी कि पोस्टर फिल्म का रिलीज़ होया पर उस दे विच स्टार कास्ट का चेहरा जिहड़ा है वह नहीं सी दिखाया गया। ते बस इस पोस्टर ने ही लोगों दे विच फिल्म नू देखन प्रति जिहड़ा उन्हां दी जिहड़ा इंट्रस्ट सीगा उस नू बताया।

किरदार किसने कीता सी और किरदार कीता सी मुकेश भट्ट दी ही भतीजी आलिया भट्ट ने। ते ये भी कह सकते हैं कि आलिया भट्ट दी फिल्मों दे विच हिंदी सिनेमा दे विच एक तरह दी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट जड़ा है डेब्यू सी।

गुलाब चंद कटारिया ने देशव्यापी मुहिम एक पेड़ माँ के नाम तहत पंजाब लोक भवन विखे बूटे लगाने की मुहिम की अगवाई की। केंद्रीय राज मंत्री जतिंदर सिंह ने जम्मू विच नवे स्थापित खेतरी मौसम विभाग केंद्र का उद्घाटन किया। राज्यसभा मैंबर संत बलवीर सिंह सिचेवाल ने जलंधर विच सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तो सोधे होए पानी नाल सिंचाई करन संबंधी प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्तीय साल विच मुख ब्याज दरां नूं बरकरार रखिया। रैपो दर नूं 5.25% उत्ते बनाई रखन दा कीता फैसला। पंजाब राज महिला कमिशन ने लुधियाणा विच 9 कुड़ियां दे लापता होण दीआं रिपोर्टां दा अपने पद्धर उत्ते नोटिस लिया। पुलिस तो जांच दी 8 जून तक वेरवे समेत रिपोर्ट मंगी गई। CBI दी मोहाली अदालत ने करोड़ां दे बैंक धोखाधड़ी मामले विच एक व्यक्ति नूं 3 साल दी सख्त कैद दी सज़ा सुनाई। पंजाब पुलिस वल्लों विदेशी दहशतगर्दी समूह दे 2 साथियों नूं गिरफ्तार करन तो एक दिन बाद अज 4 होर मुलजमान नूं 5 पिस्तौलां 1 किलो तो वध हीरोइन अते 5 लाख रुपए दे ड्रग मनी नाल काबू किया। पंजाब विच अमृतसर पठानकोट कौमी शाहरा उत्ते अज सवेरे वापरे एक सड़क हादसे विच इको परिवार दे 2 व्यक्तियों की मौत ते 14 जख्मी। नॉर्वे शतरंज दे 9वें दौर विच प्रज्ञानंदा रमेश बाबू ने भारत दे ही विश्व चैंपियन डी गुकेश नूं हरा के अपनी खिताबी दावेदारी बरकरार रखी। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ FM ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲ ਚਾਹਤਾ ਹੈ।

FM 102.7 MHz से ट्यून इन कितना FM रेनबो दिल से दिल तक। नमस्कार आदाब जी आयानू प्रोग्राम दिल चाहता है देविच अपने दोस्त आज निहारल हंदिना बने हुए इस खूबसूरत प्रोग्राम जिस विच तुहाड़ियां हिंदी ते पंजाबी फिल्मां दियां फरमाइशां जिहड़ियां है फिल्मी गीतां दियां ओह पूरियां कीतियां जांदियां। अज कोई गीत सुनना है किसी नूं कोई सोंग डेडिकेट करना है ते जुड़ सकते हो प्रोग्राम दे विच। नंबर नोट कर लो जी, नंबर है जी 9855 10 10 27। इस नंबर ते तुसी सानूं भेजने अपने प्यार भरे सुनेहे अपनियां फरमाइशां कि कीड़ा गीत अज तुसी सुनना चाहुंदे हो ते दे नाल ही उस गीत दे नाल कोई अगर कहानी जुड़ी है जिंदगी बारे या कोई भी सीख या कोई भी किस्सा जो चेते आ रहा है जहन दे विच आ रहा है जरूर सांझा करना अपने दोस्त दे नाल। प्रोग्राम दिल चाहता दे विच जरूर शामिल करांगे। ते नंबर एक बारी फिर दोहरा देने जी 9855101027। तुहाड़े नाल प्रोग्राम राही जुड़ना गलबात करना इंज एहसास लिया है जिवें पहला पहला प्यार होवे।

प्रोग्राम दिल चाहता है देविच अगला मैसेज साढ़े तक पहुंचाया है। पिंड पंचायत कालेगांव जाफराबाद तो श्री सुधाकर राजे जादव, डॉक्टर प्रशांत कुमार संचित, प्रथमेश प्रणाली सरवद सानवी ते कल्पना, पूरे दे पूरे देशमुख परिवार का बहुत शुक्रिया। फरमाइश है जी, इन्हां दी फिल्म प्रेम बंधन, गायक लता मंगेशकर ते किशोर कुमार दी आवाज़ विच मैं तेरे प्यार में पाशा। अगला मैसेज पिंड नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान तो वेद मिड्डा अलका मिड्डा जी सप्रेम नमस्कार लिख के भेज रहे ने। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति ते भूमिका प्रोग्राम का आनंद मान रहे ने ते मैसेज राही प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। इस नाल ही सैक्टर 60 मोहाली चंडीगढ़ तो टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, इन्हां दे नाल ही कालका तो शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज ते बिट्टा बजाज, बहुत शुक्रिया इन्हां सारे ही दोस्तों का। एक होर मैसेज साढ़े तक पहुंचा है, रिस्पेक्टेड होस्ट जी किसी भी सदाबहार गीत दे विच शामिल किया जाए नाम। पिंड नथाणा तो पंजाब तो मैसेज आया जी हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता ते गीता ते नाल ही सुनेहा दिंदे ने खुशियां वंडन दा, खुश रहन दा।

नमस्कार, आदाब, आफरीन। एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जंदे दा एफएम रेनबो चैनल ट्यूनिंग कीता होया तुसी अपने दोस्त आरजे निहारल दे नाल। सारे ही दोस्तों का प्रोग्राम दे विच निघा स्वागत करते हाँ, इस्तकबाल करते हाँ। शामे गजल खास

याद पे किसका बस है, इस दुनिया में कौन है जो अपनी याद को रोक सकता है। ये तो बिन बिताए चली आती है बस, सूरज का ढलना तो यूं ही बहाना है। सच पूछो तो हमें तो दिन में भी याद आती है उन हाथों की, जो हाथों से आंखों से दूर हो गए। प्रोग्राम शामी गजल सुन रहे हो अपनी दोस्त आरजे निहारल हनेना। दोस्तों, लोग पूछते ने कि उन्हों इन्ना याद क्यों कर दिया, उन्हों इन्ना याद क्यों कर दिया, पर यादा ते किसे दा वास्ता नहीं हुंदा। ते लोगों के इन्हों सवालों ते इवन इंशा लिखते ने, कुछ कहने का वक्त नहीं, ये कुछ ना कहो खामोश रहो, ए लोगों खामोश रहो, हाँ ए लोगों खामोश रहो। सच अच्छा पर उसके जिलों में जहर का है एक प्याला भी, पागल हो क्यों ना हक को सुकरात बनो, खामोश बनो। प्रोग्राम दी अगली गजल तुहाड़ी पेशे खिदमत जगजीत सिंह दी आवाज़ दे विच।

दुनिया के सवालों से, शोर से मन यही चाहता है कि कुछ देर खामोश बैठो। खामोशी में क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब होते हैं। याद दी गल कर रहे हैं प्रोग्राम शामी गजल दे विच। कहिंदे जद रात दी तन्हाई, जद रात दी तन्हाई दिल विच उदासी पैदा करे,

किसी दी याद आना, बहुत याद आना एक नेचुरल प्रोसेस है, पर जरूरी है इस याद दे विच भी खुद नूं समेटी रखना। मुश्किल है क्योंकि जी बिखरन नूं करदा है, पर जे इस कमजोर वक्त जे खुद नूं समेट लिया तो जिंदगी दे बेशुमार खजाने इंसान दी चोली पैंदे ने। बशीर बद्र साहब दी एक बड़ी मशहूर गजल है, लिखदे ने, कुछ यादों के मौसम होते हैं, कुछ यादों के साए होते हैं, तुम अक्सर जिनको भूल गए वो कितने प्यारे होते हैं, उन आँखों को मत भूल जाना जिनमें कुछ ख्वाब पुराने हो, कुछ टूटते हुए रिश्तों की कुछ शहर दिल वीराने हो। प्रोग्राम शामे गजल दिविच समा आ गया है तुहाडे तो इजाजत लैन दा, पर इजाजत लैन तो पहला तुहाडे वास्ते पेश करन जा रही हां जगजीत सिंह ते चित्रा सिंह दी आवाज दे विच ए प्यारी खूबसूरत गजल। क्योंकि याद जिन्नी मर्जी आए आखिर दे विच मन विच सिर्फ इक्को ख्याल हुंदा है कि काश एक दिन दो दिन फिर मिलन जिंदगी विच मुलाकात दी ते उदन दिल दे हर इक चा पूरे कर लिए। इस नाल ही मैनू अपने दोस्त आजी नेहरल नूं दिओ इजाजत ते आनंद मानो जगजीत सिंह ते चित्रा सिंह दी आवाज़ दे विच ए गज़ल।

तुमको पाकर भी ना कम हो सकी, तुमको पाकर भी ना कम हो सकी, बेताबी ये दिल इतना आसान तेरे इश्क का गम था ही नहीं।

0: उसकी गली से एक बार जो गए वापस मुड़ना मुश्किल था, पर जो बुलाए वो एक बार प्यार से तो वापस मुड़ना इतना भी मुश्किल ना था।
1: अरे अरे।

रुक जाओ ना जी, दिल कहता है रुक जाओ ना जी, मगर जून एलिया लिखते हैं, कितने ऐश से रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको बातें होंगे, हर किसी दी पसंद होना।

दोस्तों, प्रोग्राम सुन रहे हो एक प्यार का नगमा है। एक खास प्रोग्राम जिस विच गल्लां बातां ते घट हुंदियां पर गीतां दी लड़ी जड़ी है, नगमा जड़ा है, गीतां दी महफिल चलदी रहिंदी है। ते इस महफिल दे विच हुण गल्लबात करिए। याद ते गल हो गई, बुलान ते गल हो गई, उसदे शहर दी भी गल हो गई। गल करिए हुण, शहर उसदे बुलाया है ते जाना भी ते पैणा। दोस्तों, किसी दी याद बड़ी ही खास हुंदी है। जद कोई बुलाए, दिलों बुलाए, तो चाहे इंसान जिथे भी होए, वो अपने आप अपने प्यार, अपने महबूब, अपने हम सफर कोल पहुंच ही जाता है। प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है विच चलन की गल हुई है, महबूब कोल जान की गल हुई है। तो सुनते हैं जी, लता मंगेशकर की आवाज़ विच ये गीत। गीत दे बोल ने चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था।